आँख शराबी तेरी हर उसमें गुलाबी डोरे डोरे डोरे आँख शराबी तेरी उसमें गुलाबी डोरे शर्म के मारे दहके गाल ये गोरे गोरे गोरे गोरे शर्म के मारे दहके।

这里广播电台听众朋友们，请收听拉达长的歌曲。

प्रयाग से चित्रकूट के मार्ग में श्री राम, सीता और लक्ष्मण को ग्राम तथा वन वासियों से हृदय स्पर्शी स्नेह प्राप्त हुआ। ग्राम वधुओं ने सीता जी के चरण छूकर उनकी मंगल कामना की, उन्हें आशीष दिया कि जब तक पृथ्वी कायम है उनका सुहाग बना रहे, वे पार्वती की भांति पति का प्रेम प्राप्त करें और वन से लौटते हुए इसी मार्ग से जाएं। लक्ष्मण ने जब विनीत भाव से आगे का मार्ग पूछा तो ग्रामवासियों की आंखों में आंसू उमड़ आए। कर्म की गति कोई नहीं जान सका है, ऐसा मानकर वनवासियों ने उन्हें सुगम मार्ग बता दिया। स्नेहसिक्त वचन से श्री राम ने उन्हें उनके घरों को वापस लौटाया। लौटते हुए स्त्री पुरुषों को ये विषाद है कि विधाता के सभी काम उल्टे होते हैं। यदि उसे इन्हें वनवास ही देना था तो व्यर्थ ही भोग विलास के साधन बनाए। व्यथित ग्रामवासी विधाता की करनी का विश्लेषण करते हैं। किसी को लगता है कि ये ब्रह्मा के बनाए न होकर अपने आप प्रकट हुए हैं। कोई कहता है कि ब्रह्मा इनका अनुपम रूप देखकर इन पर मुग्ध हो गया होगा और इन्हीं की छवि में स्त्री पुरुष बनाने लगा होगा, किंतु बहुत यत्न करके भी अपनी रचना को इन जैसा सुंदर नहीं बना सका होगा, तो ईर्ष्यावश इन्हें वन में छिपाने की योजना बना ली।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। भारत फ्रांस मैत्री संबंधान प्रशंसयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस नगरे स्वामीनारायण मंदिरस्य उद्घाटनम अकरोत्। तेन राष्ट्रपति मैक्रों वर्यस्य योगदानम संस्मृत्य प्रोक्तम यत् एआई प्रौद्योगिक्याः अथ जलवायु संकट निवारणस्य दिशि उभौ देशौ जागतिक नेतृत्वं वहतः। मंदिर निर्माणम सांस्कृतिक सेतु रूपेण कार्यं करिष्यति इति तेन प्रतिपादितम्।
2: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन भ्रामक वार्तानां खंडनं कृतम्। यासु इसरो संस्थायाः निजीकरणस्य उत तस्याः भूमिकायाः न्यूनीकरणस्य संभावना व्यक्ता आसीत्। सामाजिक माध्यमेषु प्रसारिते एकस्मिन् संदेशे इसरो संस्थया स्पष्टीकृतं यत् न तु अस्याः निजीकरणं करिष्यते न च अस्याः महत्वं न्यूनं भविष्यति। संस्थया उक्तं यत् अंतरिक्ष क्षेत्रे निजी क्षेत्रस्य सहभागितायाः मुख्य उद्देश्यम् इसरो संस्थां भारतस्य भावी अंतरिक्ष कार्यक्रमस्य अग्रिम जनाः अनुसंधानेषु अधिक प्रभावी रूपेण ध्यानं केन्द्रीकर्तुं सक्षमं करणम् अस्ति। यदा च उद्योग क्षेत्रं परिपक्व प्रौद्योगिकीनां क्षमतानां च विस्तारं करिष्यति। दिल्ली राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा रेखा गुप्ता इत्यनया नवदिल्ल्याः सत्यनिकेतन क्षेत्रे भवन पतनस्य घटनायाः मजिस्ट्रियल इति दण्डाधिकारी अनुसंधानस्य आदेशः प्रदत्तः तथा च भवनस्य स्वामिनः विरुद्धं FIR इति प्राथमिकी पञ्जीकर्तुं निर्देशोऽपि प्रदत्तः। मुख्यमंत्री कार्यालयः अवदत् यत् घटना स्थलस्य समीक्षायाः घटनायाः प्रारंभिक मूल्यांकनस्य च अनन्तरं अयं निर्णयः स्वीकृतः। CMO कार्यालयः अवदत् यत् ये गभीर घटनायाः कृते उत्तरदायिनः इति ज्ञायते ते पूर्णतया उत्तरदातारः भविष्यन्ति तथा च विध्याः कठोरतम उपबन्धैः व्यवहृताः भविष्यन्ति। अत्रांतरे गतरात्रौ अपरस्य मृत शरीरस्य प्राप्ते सति अस्यां घटनायां मृतकानां संख्या 6 यावत् वर्धितास्ति।

होगी इंडोनेशिया, आईरनेव इंडोनेशिया, मनुतुप रुआंग उडारा दिशा कितार बंदारा सोकार्नो हाता दान हालिम परदाना सुमा दी जकार्ता सरता एनम बंदारा लाइनिया तरमासुक बंदारा रंडिन इंदेन दुआ दी लामपुंग अकीबात अदानिया अबू वुलकैनिक दी चीना दुआ औरंग तेवास दान सपुलु लाइनिया मासीह दी नियता कान हिलांग सतेला बंचाना तेना लंगसोर दान आलीरान लुमपुर मलांदा कोता जियान दी प्रोविंसी जियांगसी बंचाना इनी दी पीचू ओले हुजान दरास यांग मंगुयूर सलामा बबरा पहाड़ी अकीबा तोपान सौदेल लेबीदारी नाम रातुस एम्पात पुलु पतुगास पनियेला मात दियांग दी लंकापी दंगान ड्रोन अलात पन देतेक्सी तांडा कहिडुपान दान अंजिंग पेलाचाक साथ इनी सेडंग मलाकुकान ओपेरासी पंचारियन दान पनियेला मातान सदिताक नियतिगा पुलु संबिलान वार्गा देसा तेलाह दी इविक्वासी समेंतारा लेबीदारी लिमा रिबु तिगारा तुस औरंग दी विलाया सकितार जुगा तेलाह दी पिंडाह कान सबागाई लंका पन चेगाहान सतीटाक निया दुआ पुलु लिमा औरंग तेवास दलम कचेला कान लालू लिंतास दी नगारा कपुलवान अफ्रीका तांजुंग वेरदे मनरूत मीडिया दान पजवात सतमपात कचेला कान इतु तरजादी पाडा हरिसाप तु दी जालुर कामपानास दी चीमा सबुआ विलाया पंगुनुंगान दी पुलाव फोगो दान मलिबात कान सबुआ बस पनुमपांग बबरापा औरंग लाइन या जुगा तरलुका दलम इंसिडेंट तरसबुत दलम सबुआ उंगाहान दी मीडिया सोशियल प्रेसिडेंट तांजुंग वर्दे खोसे मारिया पेरेरा न्यूज मनियबुत कचेला कान इतु सबा गए बंचाना बेसार सबुआ त्रुक टांकी बाहन बकार मलदाग दी ईरान बागियान बारात मनेवास कान सवेलास औरंग दान मलुकाई तुजू लाइन लिया त्रुक टांकी तरसबूत बर्तावार बर्तरा बर्त तब्रा कान दंगान बबरा पा मोबिल सबलुम तरबाकार हैबाद दी देकात पौस पॉलिसी लालू लिंतास दी देकात कोटा सनांदाज विलाया कुर्दी दी ईरान सनांदाज तरलताक सकितार एम्पात रातुस किलोमीटर दी सबेलास बारात इबू कोता तेहरान पारा कुर्बान लुका तेला दी लारी कान करुमा साकित कुंजुंगान राजनाथ का श्रीलंका मंत्री प्रताहनान राजनाथ सिंह अकान मलाकुकान कुंजुंगान रश्मि कर श्रीलंका मलुलाई तांगाल दिलापन हिंगा सपुलु बुलान इनी कमंत्रियान प्रताहनान मनियाता कान बाबा बापाक सिंह अकान मंगादा कान कंसुलतासी दंगान पारा पमिम्पिन श्रीलंका दान बर इंटरेक्सी दंगान दिसोपोरा इंडिया दी कोलंबो सलामा कुंजुंगान तरसबूत दिया जुगा अकान ममिम्पिन देलेगासी तिंका तिंगी अंतर दीदी दारी पजबात सीनियर दारी कमंत्रियान प्रताहनान दान कमंत्रियान लुआन नगेरी पन्यतान कुआइन पजबात बेया चुकाई तेला मनियता सरातुस तिगा पुलु एम्पात कुआइन पेरा कियांग दी दुगा ममे लिखी नीलाय पेंटिंग सचारा आर्केनोलोजिस दारी टोटल एम्पात रातुस दलापन पुलु एम्पात कुआइन पेराक दान सातु कुआइन एमस यांग दी बाबा ओले दुआ पनुमपांग यांग तिबा दारी दोहा दी बंदारा इंटरनेशनल इंदिरा गांधी मनोरुत परनियता आन रश्मी पतुगास बेया चुकाई उडारा मंचेगात कदुआ पनुमपांग तरसबूत सतेला मरेका तिबा पाडा दुआ सितंबर पमरिक्सा आन तरहडा बगासी मरेका मंग हासिल कान पनमपुआन दान पनियता आन दुआ पुलु कोमा दलापन रातुस दलापन पुलु तिगा किलोग्राम क्वाइन एमस दान पेरा यंग सचारा क सलरुहन बर नीलाई एम्पात पुलु तुजु कोमा एनाम बेला लाख रूफी बर दसार कान नीले तारीफ करेना बर उपाया मलेवाती पमरिक्सा आन बियाया चुकाई तांपा मलाकुकान दिक्लरासी बरंग बरंग तरसबु दिसीता बरदासार कान पासाल सरातुस सपुलु उन्नंग उन्नंग बिया चुकाई ताहुन सरिबु संबिलान रातुस एनाम पुलु दुआ पर नियाता आन तरसबु जुगा मनियबुत कान बाहवा पनियली दी कान लेबिह लांजुत मासी सरंग बरलांगसुंग ईरान मंगुमुमकान
अकान मन ताप कान जोना तरबता।

0: Harapan datulah menikmati lagu-lagu tadi dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumental ya, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam kasan dan saran kepada kami melalui email di airindonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan
1: समाचार सुनिए. नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं सर फिरोजी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए. इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज. इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, इसे निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे. ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष बाद AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं. फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है.
2: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं. मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे. टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं. हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास फ्रांस में भारतीय सैनिकों के बलिदानों का गवाह है. श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है. उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस संभावना को भी एक नया आयाम दिया है.
2: भारत फ्रांस ज्वाइंट वेंचर्स की संभावनाओं पर बातें होती है. स्वामीनारायण मंदिर ने इस संभावना में भी एक नया आयाम जोड़ा है. ये मंदिर मेड इन इंडिया है और बिल्ट इन फ्रांस है. इसके काफी पत्थरों को भारत में तराशा गया है. भारत की प्राचीन प्रतिभा यहाँ फ्रांस में आधुनिक इंजीनियरिंग से आकर जुड़ चुकी है. पेरिस में इस भव्य मंदिर ने आकार लिया है. इसलिए मैं आशा करता हूँ ये मंदिर सदियों तक भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और संभावनाओं का भी प्रतीक बनकर उभरेगा.
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए.
3: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था. बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके

0: कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
1: मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मृतकों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। NDRF, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और NDRF के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध इमारतें तत्काल सील की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश कॉलेज आज इस हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। वहीं आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यवसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी, जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: ये समाचार हमारे ऐप NewsOnAIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है।
7: इस बैठक में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। परिषद का यह मंच आपसी सहयोग को बढ़ाने और साझा हितों से जुड़े मामलों पर मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। बैठक में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे

0: और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
1: प्रदेश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अब अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण है कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्यप्रदेश से हुआ। ऐसे में हम अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और परस्पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध है।
0: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने दो यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और एक सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के अंतर्गत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: भारत ने AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC Under-20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन के भव्य लोक महोत्सव का समापन कल शाम रामबन जिले में हुआ। महोत्सव में पहाड़ी समुदाय की समृद्ध लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और जातीय पहचान का प्रदर्शन किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 0112331041, 0112371717 और 0112331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद सरफिरोजी। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को दिया है, नक्सलवाद खत्म किया, देश को अब ड्रग्स मुक्त बनाएंगे। ड्रग्स मुक्त युवाओं से 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करने का आह्वान। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के इस कथन को सुर्खी बनाया है, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा, नक्शे में यही दिखे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। हिंदुस्तान के अनुसार भारत ने बाल विवाह और जबरन विवाह रोकने के लिए 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। दैनिक भास्कर ने अपने आर्थिक पन्ने पर लिखा है, महिलाओं के काम पर जाने से घरों में बराबरी बढ़ी। एक शोध के अनुसार महिलाओं के नौकरी करने का असर सिर्फ परिवार की आय पर नहीं पड़ता, घर में उनकी स्थिति भी बदलती है। 2025 की एक श्रम सेवा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 में से 39 महिलाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप से 4,00,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, पंजाब केसरी की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति की घोषणा की। दैनिक भास्कर लिखता है, नए विचारों और उद्यमशीलता को गति देने के लिए सरकार की बड़ी पहल।

0: स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 400 करोड़ का बजट। कई अखबारों ने अपने खेल पृष्ठ पर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पहली चाइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताबी जीत को सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India-France strategic partnership is special because it rests upon strong foundation of long-standing cultural and political connections. Delhi Chief Minister Rekha Gupta orders magisterial inquiry into Satya Niketan building collapse incident, FIR lodged against building owner. ISRO says space sector reforms are aimed at creating larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem, and it should be seen as ecosystem expansion and capability multiplication rather than privatization. Union Home Minister Amit Shah to chair 20th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa today. OPEC plus countries decide to keep oil production target for October unchanged. And in football, India qualify for AFC Under 20 Asian Cup after 20 years following 3-0 victory over Bangladesh in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of the Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both sides are also celebrating this year as the India-France Year of Innovation. The Prime Minister said the India-France strategic partnership is special because it rests upon the strong foundation of the long-standing cultural and political connections.
3: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
2: He said history bears witness to the sacrifices of the Indian soldiers in France, a history that continues to live in the collective memory and hearts. Mr. Modi said those interested in languages also know the important role French scholars have played in promoting and popularizing Sanskrit. He added that now, through the magnificent BAPS Swami Narayanan Temple, a new chapter has been added to the India-France deep cultural relationship.
3: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
2: Delhi Chief Minister Rekha Gupta has ordered a magisterial inquiry into the building collapse incident in Satya Niketan area of New Delhi and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review.

0: saying need to promote football alongside education from school level. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India-France strategic partnership is special because it rests upon strong foundation of long-standing cultural and political connections. Delhi Chief Minister Rekha Gupta orders magisterial inquiry into Satyaniketan building collapse incident, FIR lodged against building owner. ISRO says space sector reforms aimed at creating larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem, and it should be seen as ecosystem expansion and capability multiplication rather than privatization. Union Home Minister Amit Shah to chair 20th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa today. OPEC plus countries decide to keep oil production target for October unchanged. And in football, India qualify for the AFC Under 20 Asian Cup after 20 years following 3-0 victory over Bangladesh. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत फ्रांस दिफाई शराकत दारी की खास अहमियत है क्योंकि ये देरीना सकाफती और सियासी राबतों की मजबूत बुनियाद पर कायम है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने सत्यनिकेतन इमारत इन्हदाम हादसे की मजिस्ट्रेट के जरिए जांच के अहकाम जारी किए हैं। इमारत के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इसरो ने कहा है कि खला के शोबे में इस्लाहात का मकसद एक वसी तर, मजबूत तर और आलमी सतह पर मुकाबला जाती भारतीय खलाई इको निज़ाम तश्कील देना है और इसे इको निज़ाम की वसत और सलाहियत में इजाफे के तौर पर देखा जाए न कि निजकारी के जरिए से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गोवा की राजधानी पनाजी में मगरबी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। ओपेक प्लस मुल्कों ने अक्टूबर के लिए तेल की पैदावार के निशाने में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है। और फुटबॉल में भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश पर 3-0 से कामयाबी हासिल करके 20 साल तक की उम्र वाले AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कई बरसों में भारत और फ्रांस के ताल्लुकात नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सदर मैखों के साथ मिलकर दोनों ममालिक एक खसूसी आलमी दिफाई शराकत दारी की तामीर कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेरिस में स्वामी नारायण हिंदू मंदिर के इफ्तिताह के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी, मसनू जहानत, AI और दिफा से लेकर खला और आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई तक दोनों ममालिक मिलकर एक नई रफ्तार और नई तवानाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ये साल इख्तरा के भारत फ्रांस साल के तौर पर मना रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत फ्रांस दिफाई शराकत दारी की एक खसूसी नौइयत है क्योंकि ये देरीना सकाफती और सियासी राबतों की मजबूत बुनियाद पर कायम है।
3: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
2: उन्होंने कहा कि तारीख फ्रांस में भारतीय सिपाहियों की कुर्बानियों की गवाह है, एक ऐसी तारीख जो इज्तिमाई यादों और जज्बात में पिन्हा है। जनाब मोदी ने कहा कि जो लोग जबानों में दिलचस्पी रखते हैं वो ये भी जानते हैं कि फ्रांसीसी दानिश्वरों ने संस्कृत को फरोग देने और मकबूल आम करने में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब अजीमुशान BAPS स्वामी नारायण मंदिर की शक्ल में भारत फ्रांस गहरे सकाफती ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा किया जा रहा है।
3: बीएपीएस के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहां भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर

0: बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
1: वजीर आजम ने कहा कि आजकल भारत फ्रांस मुश्तरका प्रोजेक्टों के इम्कानात पर काफी बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस इम्कान में भी एक नए पहलू का इजाफा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मंदिर मेड इन इंडिया है, जबकि इसे फ्रांस में तामीर किया गया है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक इमारत मुनदम होने के वाकये की मजिस्ट्रेट के जरिए जांच का हुक्म दिया है और इस इमारत के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत जारी की है। वजीर आला के दफ्तर ने बताया कि यह फैसला जाए हादसा के जायजे और इस वाकये की इब्तदाई जांच के बाद किया गया है। वजीर आला के दफ्तर ने कहा कि इस अलमनाक वाकये के जिम्मेदार अफराद को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल रात जाए हादसा से एक और लाश निकाले जाने के बाद इस वाकये में मरने वालों की तादाद 6 हो गई है। NDRF, फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और दीगर एजेंसियां तलाश और बचाव की कार्रवाई में मसरूफ हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता से बात की। जनाब शाह ने बताया कि जख्मियों को तमाम जरूरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और NDRF के डायरेक्टर जनरल ने जाए हादसा का मुआयना किया। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि इस इमारत के बेसमेंट में मरम्मत का काम जारी था। इस अलमनाक वाकये के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज बंद रहेगा। भारत की खलाई तहकीक की तंजीम इसरो ने कयासाराइयों और गुमराहकुन मालूमात पर मबनी मीडिया में गर्दिश करने वाली इन खबरों पर वजाहत जारी की है कि इसरो को प्राइवेट करने या इसके रोल को कम करने की कोशिश की जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो इसे प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा और न ही इसकी अहमियत को किसी तरह कम किया जाएगा। तंजीम ने यह भी कहा कि खला में प्राइवेट शोबे की शराकत का मकसद यह है कि इसरो भारत के खलाई प्रोग्राम के अगले दौर में पुख्ता टेक्नोलॉजीज और सलाहियतों में इजाफा करने के साथ साथ अपनी सरगर्मियों को मजबूत तर बनाने पर तवज्जो मरकूज करे। इसरो ने कहा कि खलाई शोबे की असलाहत का मकसद एक वसी तर, मजबूत तर और आलमी सतह पर मुकाबला जाती भारतीय खलाई इको निज़ाम तश्कील देना है। इसरो ने कहा कि भारतीय सनत अपनी पुख्ता सरगर्मियों में इजाफा कर सकती है, इससे बड़े पैमाने पर पैदावार तिजारती अंदाज इख्तियार करने, इख्तरा और आलमी मार्केट तक रसाई की जा सकेगी और इसरो की साइंसी और तकनीकी अफरादी कुव्वत, जदीद तरीन तहकीक, अगले दौर की टेक्नोलॉजीज और पेचीदा कौमी मिशनों पर तवज्जो मरकूज करने में मदद मिलेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गोवा की राजधानी पनाजी में मगरबी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस मीटिंग का इनेकाद उमूर दाखिला की वजारत के बैन रियासती काउंसिल का सेक्रेटरिएट करेगा और इसकी मेजबानी गोवा सरकार करेगी। मगरबी जोनल काउंसिल गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र, नीज मरकज के जेर इंतजाम इलाके दादरा और नगर हवेली, नीज दमन और दीव पर मुश्तमिल है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस मीटिंग में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के वज़रा आला और सीनियर वज़रा शिरकत करेंगे। दादरा और नगर हवेली, नीज दमन व दीव के नुमाइंदे भी इसमें हिस्सा लेंगे। मीटिंग में ऐसे मामलात पर तबादले ख्याल किया जाएगा जिनके हल के लिए रियासतों के दरमियान या मरकज़ रियासतों के दरमियान बेहतर तालमेल ज़रूरी है। काउंसिल के इस प्लेटफॉर्म से बाहमी तालमेल में इजाफा करने और मुश्तरका मफादात के मामलात पर यकजा होकर आगे बढ़ने का मौका फराहम होता है। मीटिंग में मरकज़ और रियासतों के सीनियर अफसरान भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को परचम अता करेंगे। पणजी से निखिल उपाध्याय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अता करेंगे। आज रियासत के उनके दौरे का आखिरी दिन है। हुसूलियाबी की ये तकरीब रियासती पुलिस फोर्स के लिए एक फख्रिया लम्हा होगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: ये तकरीब तलाई गांव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में मुनाकिद की जाएगी। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर या राष्ट्रपति का निशान पुलिस फोर्स को दिए जाने वाले आला तरीन एजाजात में शामिल है। गोवा पुलिस के लिए ये एजाज खुद को वक्फ कर देने वाली खिदमात, उसूल पसंदी और रियासत के अवाम के तई साबित कदमी का एतराफ है। इस तकरीब से पहले जनाब अमित शाह मगरबी जोनल काउंसिल की मीटिंग में शिरकत करेंगे जिसमें इलाकाई अहमियत के मामलों पर बातचीत की जाएगी। निखिल उपाध्याय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। ओपेक प्लस के 7 असल ममालिक सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत,

0: कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान में कल वर्चुअल वसीले से एक मीटिंग का इनेकाद किया, जिसका मकसद आलमी मार्केट में तालमेल और मजमुई हालात का जायजा लेना था। उन्होंने आलमी गैर यकीनी सूरतेहाल के दौरान अक्टूबर के लिए तेल की पैदावार से मुतालिक अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये फैसला ओपेक प्लस की तरफ से तेल की पैदावार में सितंबर के महीने में तकरीबन 188,000 बैरल रोजाना के इजाफे के बाद किया गया है। ये इजाफा तेल की पैदावार में तकरीबन 10,65,000 बैरल रोजाना की रजाकाराना कटौती के अमल को पूरा करने के बाद किया गया है। अमल का यह सिलसिला 2023 में शुरू हो गया था। ये मीटिंग ईरान और आबनाए हुरमुस के आसपास तनाज़े में मुलविस मुल्कों समेत तेल बरामदात में लगातार रखना अंदाजी के पस मंज़र में मुनक़द की गई है। इस रुकावट की वजह से आलमी तेल सप्लाई और तेल की कीमतों से मुतालिक ओपेक प्लस की पैदावार के फैसलों पर महदूद तौर पर असर पड़ा है। मुत्तहिदा अरब अमारात इस साल मई में इत्तेहाद से अलग हो गया था। उसने कहा था कि वो कौमी मफाद और मार्केट की अशद ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मौसर तौर पर तआवुन का पाबंद है। उम्मीद है कि ओपेक प्लस की मीटिंग मार्केट के हालात और पैदावार की सतह का जायज़ा लेने के लिए अक्टूबर में मुनक़द होगी। ईशानी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: ईरान के सरकर्दा अफसर ने ऐलान किया है कि आइंदा दिनों में आबनाए हुरमुस से बाहर एक नए पाबंदी वाले इलाके का ऐलान किया जाएगा और उनके साथ राब्ता किए बगैर इस इलाके में दाखिल होने वाले किसी भी जहाज को ईरान की बंदिशों वाली फहरिस्त में शामिल कर लिया जाएगा। कौमी सलामती की सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा कि ये इलाका अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी की हद से खलीज फारिस के इलाकों की हद तक होगा, जो जहाज किसी भी तरफ से आबनाए हुरमुस की तरफ जाएंगे और इस इलाके में दाखिल होंगे उन्हें बंदिशों का सामना करना होगा। ये बात ईरान के सरकारी मीडिया ने बताई है। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की शाही सवारी को आज आकाशवाणी पर लाइव नशर किया जाएगा। आकाशवाणी उज्जैन इसे दिन में 2 बजे से रात 10 बजे तक नशर करेगा। ये नशरिया मध्य प्रदेश में आकाशवाणी के सभी स्टेशनों पर दस्तियाब होगा। सैलाब ने बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में मामूलाते जिंदगी को मुतासिर किया है। गंगा, गंडक और कोसी नदी समेत तमाम बड़े दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। पानी की सतह के पेश नजर हुक्काम करीबी नजर रखे हुए हैं। पटना में मुख्तलिफ घाटों पर दरिया की आबी सतह खतरे की बुलंद तरीन सतह को पार कर गई है। उत्तर प्रदेश में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। 24 जिले अब भी सैलाब से मुतासिर हैं और कई नदियों में अब भी तुखियानी है। इंतजामिया ने गर्रा और ककरा नदियों के किनारे और नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया है। इधर मौसमियात के महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। फुटबॉल में भारत ने 20 साल तक की उम्र के AFC एशियाई कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत को यह कामयाबी 20 साल में पहली बार हासिल हुई है। उसने ताशकंद में ग्रुप बी के अपने फाइनल क्वालिफाइंग मैच में बांग्लादेश को 3-0 से शिकस्त दी। AFC का 20 साल तक की उम्र का ये एशियन कप टूर्नामेंट चीन में अगले साल 24 मार्च से 10 अप्रैल तक खेला जाएगा। बैडमिंटन में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने कल शेंजेन में चाइना मास्टर्स में मर्दों के डबल्स का खिताब हासिल कर लिया। भारतीय जोड़ी ने इस फाइनल मैच में चीन की हे जिन तिंग और रेंग जियांग यू की जोड़ी को 11-21, 21-13, 21-17 से हराकर चाइना मास्टर्स का पहली बार ये खिताब जीत लिया। इस जोड़ी का इस सीजन का ये दूसरा खिताब है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्लाह।
2: शुक्रिया कौनेन। कौमी राजधानी दिल्ली से शायब होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने दिल्ली में एक कसीर मंजिला इमारत के मुनहदिम होने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि ये इमारत पुरानी थी और बेसमेंट में मरम्मत के दौरान यह हादसा पेश आया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत सरकर्दा रहनुमाओं ने इस हादसे पर दुख का इजहार करते हुए महलुकीन के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गोवा में नशीले मादों की रोकथाम से मुतालिक एक खाका जारी करते हुए कहा कि भारत को 2029 तक इस लानत से छुटकारा दिलाना है। इस खबर को आज के अखबारों ने अहमियत के साथ जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल के इस बयान को नुमाया किया है कि आलमी नक्शे पर भारत का मौकिफ वाज़ेह है।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے

0: भारत फ्रांस दिफाई शराकत दारी की खास अहमियत है क्योंकि ये देरीना सकाफती और सियासी राब्तों की मजबूत बुनियाद पर कायम है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन इमारत इनेदाम हादसे की मजिस्ट्रेट के जरिए जांच के अहकाम जारी किए हैं। इमारत के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इसरो ने कहा है कि खला के शोबे में असलाहत का मकसद एक वसी तर, मजबूत तर और आलमी सतह पर मुकाबला जाती भारतीय खलाई इको निज़ाम तश्कील देना है और इसे इको निज़ाम की वसत और सलाहियत में इजाफे के तौर पर देखा जाए, न कि निजकारी के नज़रिए से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गोवा की राजधानी पनाजी में मगरबी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। ओपेक प्लस मुल्कों ने अक्टूबर के लिए तेल की पैदावार के निशाने में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है। और फुटबॉल में भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश पर 3-0 से कामयाबी हासिल करके 20 साल तक की उम्र वाले AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राग नट भैरव में शुभम कुमार का गायन। तबले पर संगति दी है मुस्तफा हुसैन ने और सारंगी पर हैं गुलाम मोहम्मद।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे राग नटभैरव में शुभम कुमार का गायन। तबले पर संगति दी थी मुस्तफ़ा हुसैन ने और सारंगी पर थे गुलाम

Muhammad. यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, अवर गेस्ट।

0: Monday at 9:15 a.m. Don't forget to tune in next week, same day, same time and same frequency for more on Our Guest. Have a nice day.
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम अवर गेस्ट. यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक.

हवा ठंडी है, बहुत खुनक अस्त। कोहरा है, कोहरा यानी मैं आलूदस्त, हवा मैं आलूदस्त या बेहस्त। बर्फ गिरेगी, बर्फ खाहत बारीद। जल्दी ही शाम हो जाती है, जल्दी ही शाम हो जाती है, जूद आश्र मी शवद, जूद आश्र मी शवद। चांदनी रात है, शब महताब अस्त, चांदनी रात है, पूर्णिमा है, पूरा चांद है यानी माह तमाम अस्त, माह कामिल अस्त। आज बारिश होगी, एमरूज बारान खाहद आमद, आज बारिश होगी, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है। चिनिन मी नमायद, चिनिन मी नमायद। हवा बहुत तेज है, हवा बहुत तेज है, बहुत बेस्योर तोंदस्त। धोबी नहीं आया, धोबी यानी रैखचू, रैखचू नयामदे, धोबी नहीं आया। तुम मेरी पैंट देर से लाए, पैंट शलवार, शलवार मरो धीर आवर दी। तुम मेरी पैंट देर से लाए, तुम बहुत खराब धोते हो, बिस्योर बैद मीशुई, धोते हो मीशुई, तुम बहुत खराब धोते हो, बिस्योर बैद मीशुई। तुम अच्छा धोते हो, तुम अच्छा धोते हो, खूब मीशुई, तुम अच्छा धोते हो। स्त्री ठीक से नहीं की है, स्त्री यानी ओतो खूब न खैर देई, स्त्री ठीक से नहीं की है, ओतो खूब न कर देई। यह कमीज जला दी, इन पेराहन रा सूखती, यह कमीज जला दी। यह रूमाल मेरा नहीं है, रूमाल दस्तमाल रमी गुयान, इन दस्तमाल माल मैं नीस्त, यह रूमाल मेरा नहीं है। तुम ये मोजा फाड़ लाए, इन जोराब रा दरी दई, इन जोराब रा दरी दे आवर्दी, मोजा जोराब। हिसाब करो, हिसाब कौन, हम दूसरे धोबी को कपड़े देंगे। मा बिरख छू ये दीगारी रख्त खाहिम दाद, हम दूसरे धोबी को कपड़े देंगे। भारत एक विशाल देश है, विशाल यानी वसी पहनावर, हिंद केशवरीस्त वसी, हिंद केशवरीस्त पहनावर। भारत एक विशाल देश है, भारत हमारी मातृभूमि है, मातृभूमि मादर वतन यानी मीहन। भारत हमारी मातृभूमि है, हिंद मीहन मास्त। भारत एक महान देश है, हिंद केश्वरे बुजुर्गीस्त, महान यानी बुजुर्ग या महीन। सब जीवों में आदमी का पद सबसे ऊंचा है, सब जीवों में आदमी का पद सबसे ऊंचा है, इंसान अशरफुल मखलूकात अस्त। तर्जुमे लफ्जी इन अस्त, सब जीवों में अज जुमले तमाम मखलूकात आदमी का पद मकाम आदम सबसे ऊंचा है, बौलातरीन अस्त। यह विषय विचाराधीन है, विचाराधीन तहत बर्रसी, इन मौजू तहत बर्रसी भी बौशद विषय यानी मौजू, यह विषय विचाराधीन है। सूचना इकट्ठी की जा रही है, इत्तलाआत जमावरी मिशवत, सूचना इत्तलाआत इकट्ठी की जा रही है, जमावरी मिशवत, सूचना इकट्ठी की जा रही है। मैं हिंदी सीख गया हूं, मैं हिंदी सीख गया हूं, मैं हिंदी याद गिरफ्तम। आपका निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ, निमंत्रण पत्र दावत नामे, पत्र यानी नामे निमंत्रण दावत, प्राप्त हुआ वौसल गर्दीत, दावत नामे ये शुमो वौसल गर्दीत, आपका निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। शनबंदगौन अजीज।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवर बेटल की आज नई दिल्ली में मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बेटल की ये यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ आज सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया।

0: मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुरानी बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
1: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक सद्भाव को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण होगा और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन देशों ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 443 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 138 अंक गिरकर 23,759 पर कारोबार कर रहा था। दिग्गज सिनेमाटोग्राफर टीएन कृष्णन कुट्टी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मलयालम सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री कृष्णन कुट्टी ने 1960 में अपने करियर की शुरुआत उम्मा फिल्म में कैमरा ऑपरेटर के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में सिनेमाटोग्राफर के रूप में काम किया। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। इस महोत्सव को स्थानीय फिल्मकारों और रचनात्मक पेशेवरों को व्यापक फिल्म उद्योग से परिचित कराने और क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करने के एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में 40 देशों की 135 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

घर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम के आज की प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ मंजुला, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। और दोस्तों, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो सिर्फ प्रकृति का उपहार नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी भी है। तो आज का दिन समर्पित है एक ऐसी चीज़ के नाम जो हमारे जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, हवा। आज है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नीला आकाश दिवस। स्वच्छ हवा हो, आसमान नीला हो, पेड़ों की हरियाली हो और शहरों में सांस लेना आसान हो, इसके लिए बड़े बदलावों के साथ हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी मायने रखती हैं। पेड़ लगाना, अनावश्यक वाहन का इस्तेमाल कम करना, बिजली और पानी की बचत करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, ऐसे छोटे कदम मिलकर प्रकृति के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं दोस्तों। तो आज के दिन से ही संबंधित है हमारा आज का सवाल, पर्यावरण की रक्षा के लिए आपका योगदान क्या होता है। हमें लिखकर भेजिए अपने जवाब, अपने छोटे से प्रयास या कोई ऐसी आदत जो आप प्रकृति के लिए अपनाते हैं। हमें ईमेल भेजिए, हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

है कि हमारे रसोई घर से निकलने वाले सब्जियों और फलों के छिलके जो हमें बेकार लगते हैं, वही धरती के लिए सबसे कीमती खजाना बन सकते हैं। इस सोच को लाखों लोगों तक पहुंचाने का काम किया है बेंगलुरु की पर्यावरण कार्यकर्ता वाणी मूर्ति ने, जिन्हें लोग प्यार से वर्म रानी भी कहते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि वाणी मूर्ति हमेशा से पर्यावरण कार्यकर्ता नहीं थी, वे गृहिणी थी, लेकिन जब उन्होंने एक विशाल लैंडफिल में कूड़े के पहाड़, दूषित मिट्टी और प्रदूषित पानी को अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने तय किया कि उनके घर का कचरा अब कभी लैंडफिल में नहीं जाएगा। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की सोच बदल दी। उन्होंने घर में गीले और सूखे कचरे को अलग करना शुरू किया, खाद बनाना सीखा और फिर दूसरों को भी सिखाने लगी। वे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट राउंड टेबल की संस्थापक सदस्यों में शामिल रहीं और वर्षों से लोगों को समझा रही हैं कि कचरे की असली जिम्मेदारी उसी की है जो उसे पैदा करता है। सोशल मीडिया पर उनके छोटे छोटे वीडियो आज युवाओं के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। इनमें से वे रसोई के कचरे को खाद बनाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, छत पर सब्जियां उगाना, प्राकृतिक सफाई के उपाय अपनाना और कम से कम कचरा पैदा करने वाली जीवन शैली सिखाती हैं। और उनकी यही पहल उन्हें नेशनल ज्योग्राफिक के वन फॉर चेंज अभियान तक भी ले गई। वाणी मूर्ति का संदेश बहुत ही सिंपल है, पृथ्वी को बचाने के लिए हमेशा बड़े अभियानों की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। यदि हर घर अपने गीले कचरे को खाद में बदल दे, प्लास्टिक का उपयोग कम कर दे और जिम्मेदारी से कचरे का प्रबंधन करे तो शहरों के कूड़े के पहाड़ अपने आप छोटे होने लगेंगे। तो आज का संदेश यही है कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार या संस्थाओं का काम नहीं बल्कि हर घर की छोटी छोटी आदतों से शुरू होने वाली एक सामूहिक जिम्मेदारी है। और शायद बदलाव की शुरुआत हमारे अपने रसोई घर से ही हो सकती है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी हरियाली और रास्ता। और कहते हैं कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत मुस्कान से होती है, लेकिन उसे लंबे समय तक निभाने के लिए केवल आकर्षण या प्यार ही काफ़ी नहीं होता है। एक और चीज़ है जो रिश्ते को गहराई देती है और वो है बौद्धिक सामंजस्य, इंटेलेक्चुअल कॉम्पैटिबिलिटी। हम अक्सर स्वभाव, आदतों और पसंद नापसंद की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होना कितना सुंदर अनुभव है, जिसके साथ आप घंटों बातें कर सके, जहां बातचीत केवल मौसम, खरीदारी या दिन भर की घटनाओं तक सीमित ना रहे, बल्कि किताबों, यात्राओं, विज्ञान, कला, समाज, इतिहास, सपनों और जीवन के अनुभव तक पहुँचे। बौद्धिक सामंजस्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों की डिग्री एक जैसी हो या दोनों बहुत विद्वान हो। इसका अर्थ है एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना, नई बातें सीखने की जिज्ञासा रखना और बिना किसी अहंकार के एक दूसरे से सीखने के लिए तैयार रहना। सोचिए कितना खूबसूरत रिश्ता होगा जहाँ पे एक दूसरे को नई किताबें सुझाएं, कोई रोचक तथ्य बताएं, किसी विषय पर चर्चा करें, किसी समस्या का समाधान साथ मिलकर खोजें और हर बातचीत के बाद महसूस करें कि आज कुछ नया सीखा है। ऐसे रिश्तों में बहस जीतने की नहीं, समझ बढ़ाने की कोशिश होती है। मतभेद भी होते हैं लेकिन मनभेद नहीं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि अलग सोच होना गलत नहीं है बल्कि सीखने का अवसर है। जब दो लोग एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, नई कौशल सीखने का उत्साह जगाते हैं, एक दूसरे के सपनों का साथ देते हैं और हर एक दिन एक दूसरे को पहले से बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं, तब रिश्ता केवल साथ रहने का नहीं, साथ बढ़ने का बन जाता है। और याद रखिए दोस्तों, सुंदर चेहरा समय के साथ बदल सकता है, फैशन बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन अच्छी बातचीत, गहरे विचार और एक दूसरे से सीखते रहने की आदत रिश्ते को हर दिन नया बनाए रखती है। इसलिए अपने रिश्तों में समय नहीं संवाद भी निवेश कीजिए। ऐसे प्रश्न पूछिए जो सोचने पर मजबूर करे। साथ में पढ़िए, नई जगह देखिए, नई बातें सीखिए, क्योंकि जब दो लोग साथ साथ सीखते हैं तो उनका रिश्ता भी साथ साथ विकसित होता है। और आज का सवाल एक बार फिर से बता दूं कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आपका योगदान क्या होता है। अपने जवाब हमें ईमेल भेजिए। ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।

और अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म शर्मिली से, और हमारे सवाल के जवाब आ चुके हैं। नवीन भाटिया जी लिखते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, और चरण दास जी लिखते हैं कि मैं सामान लाने के लिए कपड़े का थैला साथ रखता हूँ, खेत में फसल के अवशेष कभी नहीं जलाए, पेड़ों के नीचे से गुठली उठाकर इधर उधर लगा देता हूँ, कभी पटाखे नहीं जलाता हूँ, बस या रेल से सफ़र करता हूँ। और चरण दास जी लिखते हैं कि, चरण दास जी का मेल तो मैंने पढ़ लिया, श्रीपाल गोयल जी लिखते हैं

पर्यावरण की रक्षा के लिए सबसे पहले हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, कपड़े के थैले का उपयोग करें, निजी वाहन के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें ताकि प्रदूषण ना हो। और उसके बाद हनी रे लिखते हैं कि वी कैन स्टार्ट सिंपली विथ टेकिंग स्टील स्ट्रॉज, यानी आप जहाँ भी जाएं अपने साथ जो स्ट्रॉज होते हैं प्लास्टिक के उसके बदले स्टील के स्ट्रॉ ले जाएं, और जो कोकोनट होते हैं उसके शेल इधर उधर ना फेंके, गार्बेज में ही डालें। और सुदर्शन मुखी जी लिखते हैं कि हवा शुद्ध रखने के लिए हमने घर में बहुत सारे गमले रखे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। बिजली पानी बहुत सोच समझ कर उपयोग करते हैं और ईवी स्कूटी चलाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं। और उसके बाद और भी हमारे पास मेल्स हैं, अनिल मेहता जी लिखते हैं कि ऊर्जा की बचत, डिजिटल जागरूकता फैलाना और कागज़ रहित कार्य प्रणाली को बढ़ावा देना। और उसके बाद अनन्या श्रेष्ठा जी लिखती हैं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी कोशिश करती हूँ, मैं पानी और बिजली बर्बाद नहीं करती, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करती हूँ, पेड़ पौधे की देखभाल करती हूँ। और उसके बाद चरणदास जी ने लिखा है कि आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण सबसे बड़ी दौलत है, रुपया पैसा अपने आप कमा लेंगे, निर्मला देवी प्रीति चौधरी जी। और उसके बाद ऐना लिखती हैं, नमस्ते, मैं पर्यावरण की रक्षा के लिए कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलूँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करूँ, साथ ही मैं अपने आसपास सफाई रखती हूँ और दूसरों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करती हूँ, क्या बात है। संदीप राय जी लिखते हैं कि मैं पेड़ पौधों की देखभाल, अधिक से अधिक पेड़ लगाने में योगदान देता हूँ, पानी और बिजली के बर्बादी नहीं करता, प्लास्टिक का कम उपयोग करता हूँ, कूड़े को इधर उधर ना फेंक कर गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने का प्रयास करता हूँ, छोटी दूरी के लिए पैदल चलने या साइकिल का उपयोग करके प्रदूषण कम करने में मदद करता हूँ, क्या बात है। और खुशबू कश्यप जी का भी मेल आया है कि उन्होंने मेल इम्प्टी छोड़ा हुआ है, अभी उसमें कुछ दिख नहीं रहा, चलिए बाद में कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके मेल्स का, और आप अभी भी हमें मेल लिख सकते हैं कि पर्यावरण के योगदान में, जो पर्यावरण की सुरक्षा के में आपका क्या योगदान है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म सरगम से। और दोस्तों, आज साड़ी पहनने के कितने अंदाज हैं, कहीं पल्लू कंधे पर, कहीं बेल्ट के साथ, कहीं जैकेट के साथ, तो कहीं बिल्कुल आधुनिक रूप में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि साड़ी का ये आधुनिक अंदाज आया कहाँ से? तो साड़ी भारत में सदियों से पहनी जाती रही, जो सांची है, भरहूत है, अमरावती की प्राचीन मूर्तियों में भी बिना सिले कपड़े को बहुत ही खूबसूरती से शरीर पर लपेटने की परंपरा दिखाई देती है। लेकिन आज हम जिस तरह से साड़ी पहनते हैं वो समय के साथ विकसित हुआ। और इस बदलाव की कहानी में एक बेहद खास नाम है, ज्ञानदा नंदिनी देवी। ज्ञानदा नंदिनी देवी रविंद्रनाथ ठाकुर की भाभी थी, यानी उनके भाई सत्येंद्रनाथ ठाकुर की पत्नी थी। वो अपने समय की बेहद प्रगतिशील और कॉन्फिडेंट महिला थी, और उन्होंने सिर्फ सामाजिक सोच को चुनौती नहीं दी बल्कि महिलाओं के पहनावे में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उन्होंने बम्बई की पारसी महिलाओं की साड़ी पहनने की शैली से प्रेरणा ली, ब्लाउज, पेटीकोट और कंधे पर सलीके से पिन किया हुआ पल्लू, और इस शैली को उन्होंने बंगाली महिलाओं के लिए अपनाया और लोकप्रिय बनाया। और आगे चलकर दोस्तों, यही शैली ब्रह्मिका साड़ी के नाम से जानी गई। और ये बदलाव सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं था, ब्लाउज, पेटीकोट और पिन किया हुआ पल्लू महिलाओं के लिए साड़ी को एक अधिक सुविधाजनक बनाते थे। उन्हें बार बार पल्लू संभालने की चिंता नहीं रहती थी, वे आसानी से यात्रा कर सकती थी, काम कर सकती थी, पढ़ाई कर सकती थी और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग ले सकती थी। यानी ज्ञानदा नंदिनी देवी ने साड़ी को छोड़ा नहीं, उसे समय के साथ एक नया रूप दिया जिसने महिलाओं को गतिशीलता और स्वतंत्रता को आसान बनाया। और अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि फैशन के हर दौर में अपना रंग बिखेरती है, साड़ी सिर्फ पहनी नहीं जाती, ये भारत की पहचान बनकर निखरती है।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को, फिल्म थी सिलसिला। और दोस्तों, जो भारतीय विवाह होते हैं उसमें चावल, जिसे अक्षत भी कहा जाता है, केवल एक अनाज नहीं, एक स्टेपल फूड नहीं, बल्कि समृद्धि, अखंडता और मंगल कामना का प्रतीक माना जाता है। और यही कारण है कि विवाह जैसे शुभ संस्कार में चावल का बहुत ही खास जगह है। अखंड दाम्पत्य जीवन का प्रतीक है साबुत चावल। ये संदेश देता है कि नवविवाहित जोड़े का प्रेम, विश्वास और साथ हमेशा अटूट बना रहे। समृद्धि और अन्नपूर्णा का आशीर्वाद। भारत में अन्न को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। चावल उर्वरता, संपन्नता और भरपूर

मधुर जीवन का प्रतीक है, इसलिए वर वधु पर चावल अर्पित कर उनके सुखी और समृद्ध जीवन की कामना की जाती है। और विवाह के बाद जब परिवारजन नव दंपति पर अक्षत बरसाते हैं तो उसका अर्थ होता है उनके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि की निरंतर वर्षा होती रहे। विदाई के समय दुल्हन द्वारा पीछे की ओर चावल फेंकने की परंपरा ये दर्शाती है कि वो अपने मायके के लिए समृद्धि, सौभाग्य और कृतज्ञता का आशीर्वाद छोड़कर जा रही है। यह भावनात्मक रूप से माता पिता के ऋण और उनके स्नेह के प्रति सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विवाह के बाद होने वाली जो बौ भात होता है उसके रस्म में नव वधु पहली बार अपने नए परिवार के लिए चावल परोसती है, और ये इस बात का प्रतीक है कि अब वो इस परिवार की समृद्धि, प्रेम और अन्नपूर्णा का हिस्सा बन चुकी है। और ओडिशा में लाजा होम की रस्म होती है जिसमें वधु अपने भाई द्वारा दिए गए लाजा यानी जो पफ्ड राइस होते हैं अग्नि को समर्पित करती है, और ये नए जीवन की मंगल कामना, त्याग और पारिवारिक स्नेह का प्रतीक माना जाता है। साउथ इंडिया में भी कई राज्यों में विवाह के दौरान वर वधु एक दूसरे के सिर पर हल्दी मिले हुए अक्षत डालते हैं। इसे शुभता, प्रेम, समृद्धि और समानता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक और वैदिक महत्व भी है अक्षत को पूजा, यज्ञ और सभी शुभ कार्यों में अनिवार्य माना गया है, क्योंकि ये पूर्णता, पवित्रता और शुभ फल का प्रतीक है।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म प्रेमनगर। और दोस्तों, एक ना आपकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं हो सकता, लेकिन अफसोस कई बच्चे और युवा एक अस्वीकृति को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं किसी लायक नहीं हूँ, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। और यहीं से माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शुरू होती है। बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना किसी असफलता के बाद शुरू नहीं होता, इसकी नींव बचपन से ही पड़ती है। उन्हें सिर्फ जीतना मत सिखाइए, हारना भी सिखाइए। सिर्फ तारीफ सुनने की आदत मत डालिए, आलोचना सुनकर खुद को सुधारना भी सिखाइए। हर मुश्किल से उन्हें बचाइए मत, मुश्किलों का सामना करना भी सिखाइए। और जब कभी बच्चा अस्वीकार हो जाए तो तुरंत ये मत कहिए कि कोई बात नहीं, इससे बेहतर विकल्प मिल जाएगा। उसके पास बैठिए, उसे सुनिए, पूछिए कि तुम्हें सबसे ज्यादा दुख किस बात का है। उसकी निराशा को छोटा मत कीजिए, उसे रोने दीजिए, दुखी होने दीजिए, थोड़ा सा समय लेने दीजिए। क्योंकि मजबूत होना भावनाएं छिपाना नहीं है दोस्तों, उन्हें समझकर उनसे आगे बढ़ना है। और माता पिता, हर बार बच्चे की ओर से लड़ना भी ज़रूरी नहीं है। हर असफलता पर शिकायत करना, हर समस्या का समाधान खुद करके देना, हर बंद दरवाज़ा उसके लिए खोल देना, ये सुरक्षा नहीं, कभी कभी उसकी भावनात्मक ताकत को कम कर देता है। उसे छोटे फैसले लेने दीजिए, गलतियां करने दीजिए, उसके परिणाम को समझने दीजिए और फिर पूछिए, अब इसे ठीक करने के लिए तुम क्या कर सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा सुनिश्चित कीजिए कि जब दुनिया उसको ठुकराए, तब उसे घर में एक ऐसी जगह मिले जहां वो बिना डर के कह सके कि मैं हार गया हूं, और जवाब मिले, हार गए हो लेकिन हमारे लिए कम नहीं हुए हो। बच्चे को विश्वास दीजिए कि आपकी मोहब्बत उसके अंकों, नौकरी, सफलता, रिश्ते या उपलब्धियों पर निर्भर नहीं है। क्योंकि जिस बच्चे को बचपन से ही ये भरोसा मिल जाता है कि दुनिया तुम्हें चुने या ना चुने, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, वो रिजेक्शन से कभी नहीं डरता।
1: उठे सबके कदम, देखो रम पम पम।

अभी हम सुन रहे थे अमित कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म बातों बातों में। और दोस्तों, हमारे रसोई घर में सिर्फ स्वाद नहीं, सदियों पुराना आयुर्वेद भी पकता है। भारतीय परंपरा में कई ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें आज विज्ञान भी फंक्शनल फूड मानता है, क्योंकि ये केवल पेट नहीं भरते, शरीर को संतुलित भी रखते हैं। जैसे दक्षिण भारत का रसम, और इसे सिर्फ सूप समझने की भूल मत कीजिए। इसमें काली मिर्च, जीरा, लहसुन, इमली और करी पत्ता होते हैं, और आयुर्वेद के अनुसार ये पाचन को सक्रिय करता है, मौसम बदलने पर गले और जुकाम में राहत देता है, भूख बढ़ाने में भी हेल्प करता है। और वहीं गुजरात और राजस्थान की बाजरे की खिचड़ी सर्दियों की औषधि कही जाती है। अगर बिहार की बात करें तो सत्तू किसी सुपर फूड से कम नहीं है। भुने हुए चने से बना सत्तू प्रोटीन, आयरन, घुलनशील रेशे का अच्छा स्रोत है। गर्मियों में ये शरीर को शीतलता देने के साथ लंबे समय तक तृप्त भी रखता है। कश्मीर का कहवा भी केवल चाय नहीं, केसर, दालचीनी, इलायची और बादाम से बना ये पेय जो है ड्रिंक शरीर में

गर्माहट बनाए रखने, पाचन को सहज करने और थकान को कम करने में सहायक माना जाता है। तो अगली बार जब कोई विदेशी सुपरफूड चर्चा में है तो अपनी थाली पर भी एक नज़र डालिए, हो सकता है स्वास्थ्य का सबसे बड़ा खजाना आपके रसोई घर में ही मौजूद हो।

अभी हम सुन रहे हैं लता मंगेशकर को फिल्म बरसात की एक रात, और इसी गीत के साथ देते हैं आज की खूबसूरत प्रस्तुति को यहीं विराम। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए रखिए अपना और अपने पर्यावरण दोनों का ख्याल। दीजिए मंजुला को इजाजत, नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस परिषद में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वडोदरा में प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा उपायों और जारी बचाव अभियान की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
1: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।

0: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच भवन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार ए मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा और कई अन्य नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि सोन नदी के जलस्तर में कमी से कुछ राहत मिली है। सोन नदी पटना के पास गंगा में मिलती है। इसमें पानी कम होने से दीघा तथा गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर का दबाव कम हुआ है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। उधर मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट है। रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवियर बेटल की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बेटल की ये यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 485 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 145 अंक गिरकर 23,753 पर कारोबार कर रहा था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की आज शाही सवारी का आयोजन हो रहा है। अंतिम शाही सवारी में भगवान महाकाल के 7 अलग अलग रूपों के दर्शन होंगे। सवारी शाम 4 बजे मंदिर से शुरू होगी और महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा और रामानुज कोट होते हुए रामघाट पहुंचेगी। आकाशवाणी उज्जैन दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक इसका लगातार प्रसारण करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Home Minister Amit Shah is chairing the 28th meeting of the Western Zonal Council in Panaji today. Chief ministers and senior ministers of Goa, Gujarat and Maharashtra, along with representatives of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, are participating in the meeting. The council provides a structured platform to discuss issues affecting two or more states or the centre and states together and strengthen mutual cooperation. Matters requiring coordinated action and those remaining unresolved at the official level could be taken up for consideration. Later, Amit Shah will present the President's police colour to Goa Police. The Enforcement Directorate ED has conducted searches at 7 premises in Kolkata, Delhi and Ranchi in connection with a case involving Akhbar-e-Mashriq Private Limited, an Urdu daily newspaper, and its director and TMC MP, Nadeemul Haq. ED has recorded an enforcement case information report on the basis of an FIR registered by Bidhannagar Police Commissionerate. The investigation agency said the case relates to allegations concerning the publication and dissemination of material allegedly promoting communal disharmony. It said the case also contains allegations regarding illegal transactions, unaccounted cash transactions and funding from suspicious sources. Delhi Chief Minister Rekha Gupta, along with Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa, visited the site of the building collapse and took stock of the situation in the Satyaniketan area of New Delhi this morning. Talking to reporters, Ms. Gupta stated

बताएं, उससे पहले हमेशा की तरह आपको गीत सुनवा देते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर बता देते हैं कि जब आप उस फिल्म को देखते हैं और उस फिल्म में पर्दे पर नजर आते हैं धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी, अमजद खान जैसे कलाकार, तो दर्शक ताली बजाने के से अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। तो वो कौन सी फिल्म है ये तो आप गीत सुनकर पता लगा ही लेंगे, और जब आप पता लगा ही लेंगे तो फिर आप हमेशा की तरह जो करते हैं वही आपको करना है, मेल के जरिए अपने जवाब भेज देना है। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। अब आपको बता दूं कि आज के इस प्रोग्राम यानी कि एक ही फिल्म लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आप सभी का स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं।

आपके ढेर सारे संदेश पहुंच रहे हैं सही जवाब के साथ, और ये फिल्म ऐसी है जिसके गीत आज भी वही कशिश रखते हैं जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। साल था 1976, फिल्म थी चरस, उस दौर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक, जिसका निर्देशन रामानंद सागर जी ने किया था। वहीं रामानंद सागर जिन्हें हम सब जानते हैं रामायण सीरियल के लिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने बॉलीवुड को कई शानदार थ्रिल फिल्में भी दी हैं। फिल्म में नजर आए थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अजीत, अमजद खान, असरानी, टॉम अल्टर, एक से एक कलाकार थे और साथ ही साथ एक से एक इस फिल्म के गीत भी थे। अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र ने सूरज का किरदार इस फिल्म में निभाया था, हेमा मालिनी सुधा के किरदार में नजर आई थी, अजीत कालीचरण बने थे, अमजद खान रोबर्ट के रूप में नजर आए थे, अरुणा ईरानी निम्मू के किरदार में दिखी थी और सेठ वृंदावन के रूप में नज़ीर हुसैन दिखे थे, असरानी पुलिस इंस्पेक्टर रुस्तम की भूमिका में थे, कैस्ट्रो मुखर्जी ने भी एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी, वहीं सुजीत कुमार लॉरेंस और शेख अब्दुल सत्तार के रूप में नजर आए थे। तो इसके अलावा भी इसमें और भी जो सह कलाकार थे सभी ने अपनी अपनी भूमिकाओं के साथ पूरा न्याय किया था।

ಇಂತಹ ಈ

0: फिल्म चरस की कहानी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी पर आधारित है। सूरज यानी कि धर्मेंद्र के पिता की हत्या और बहन का अपहरण एक अंतर्राष्ट्रीय स्मगलिंग गिरोह कर लेता है। अपनी बहन की तलाश और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सूरज एक सीक्रेट एजेंट बन जाता है। इस सफर में उसकी मुलाकात रोम में सुधा यानी कि हेमा मालिनी से होती है। धर्मेंद्र का एक्शन और हेमा मालिनी के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने थिएटर्स में आग लगा दी थी। ये फिल्म 1976 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों में शामिल थी। इस फिल्म की शूटिंग इटली यानी कि रोम जैसे खूबसूरत अंतर्राष्ट्रीय लोकेशंस पर हुई थी, जो उस दौर की हिंदी फिल्मों के लिए एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की रियल लाइफ जोड़ी का जादू इस फिल्म में सर चढ़कर बोला था।
1: गुड नाइट।
2: हाँ, गुड नाइट।
1: अच्छा, गुड नाइट।

चलो। फिल्म चरस का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मशहूर संगीतकार जोड़ी ने। गीतों को आवाज देने वाले प्रमुख गायकों में किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मोहम्मद रफी जैसे दिग्गज नाम शामिल थे। फिल्म के गीतों ने उस दौर के संगीत की वो खासियत, जो गीत है उनमें वो खासियत सुनाई देती है जिसमें ऑर्केस्ट्रियन धुन और जो गायकी है तीनों का खूबसूरत मेल एक साथ दिखाई देता है। कोई भी गीत ले लीजिए, अपने आप में आज भी वो गीत बहुत ही मधुर है।

जब बात 1970 के दशक की फिल्मों की होती है तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी का जिक्र होना तो स्वाभाविक ही है। धर्मेंद्र अपने दमदार व्यक्तित्व और एक्शन भूमिकाओं के लिए बहुत लोकप्रिय थे, वहीं हेमा मालिनी अपनी खूबसूरती, अभिनय और नृत्य के कारण दर्शकों की पसंदीदा अभिनेत्रियों में शामिल थी। अब इनके बीच में हम एक नाम को कैसे भुला सकते हैं, वो है अमजद खान। अमजद खान उस दौर में अपनी दमदार अदाकारी से अपनी अलग पहचान बना रहे थे। शोले में गब्बर सिंह की भूमिका के बाद उनका नाम दर्शकों के बीच खास तौर पर लोकप्रिय हो चुका था। चरस में उनका अभिनय फिल्म के रोमांचक वातावरण को और भी ज़्यादा मजबूत करता है।

और अब वक्त है कि आपने जो संदेश भेजे हैं उनमें उन संदेशों को लेना और आपके नामों को पढ़ना। तो हमारे पास सबसे पहला जो संदेश आया है वो पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवानगन दुर्गा प्रसाद पराग जी का आया है। अगला संदेश गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हमें भेज रहे हैं। पद्मा टॉकीज नेपा नगर से सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर और कुशल जी हमारे साथ हैं। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम रागबिया और शेख मुन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत भापसर जी प्रमिला जी के साथ ढेर सारी जानकारी के साथ वीरनगांव जंक्शन से गुजरात से हमारे साथ हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी हैं। जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगनेजा पूनम जी हमारे साथ हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन शेनवास सरफराज फरदीन परिवार के सभी सदस्य हैं। डी वी राणा नेहरू बिहार दिल्ली से जुड़ चुके हैं। बटिंगेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस पिंकी लबलिया आरती जी हमारे साथ हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल कौशल्या देवनगन हेमलता और डिम्पल जी हमारे साथ हैं। संबलपुर कांकेर से गुणराम ज्योति ओजस्वी यादव जी हमारे साथ हैं। देवशंकर तामुरिया जयदेव जी हमारे साथ डोंजी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा ईशान जी हमारे साथ हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश ब्रह्मा प्रिंस निखिल जी हमारे साथ हैं। अगला संदेश हमारे पास सुदर्शन मुखिया नेता सिमरन जी का शांति नगर सोनीपत से आया है। और ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कस्बा गुन्नेर यूपी से फारूक अली और फैजी फरान जी हमारे साथ हैं। संजय डिंगिया नमन जी अपार जी बागपत उत्तर प्रदेश से हमें सुन रहे हैं। भबरपुर बसना से चंपा देवानगन राधेश्याम जी हमारे साथ हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन ट्रिकेस्टो रोजी जी हमें सुन रहे हैं। संदीप मक्कर जी जालंधर पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश हमारे पास पहुँचा है, ये आया है हमारे पास। बहुत सारी जानकारी इन्होंने हमसे शेयर करी है और इनका नाम है अजीत भापसर जी का ही एक और संदेश पहुंचा है। तो आप सभी का हम ढेर सारा शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सफ़र में हम सफ़र बनने के लिए। कुछ और संदेश भी हैं। पहाड़गढ़ मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक जी हमें सुन रहे हैं। रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित जी हमें हमारे साथ हैं। इशक मोहम्मद जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेरी से जुड़े हुए हैं। टीवी राणा नेहरू बिहार दिल्ली से हमें सुन रहे हैं। और बसंत कुमार सिन्हा जी दमदम कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमेशा की तरह आपसे हम इतना ही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक अपनी लिस्ट में चरस फिल्म को शामिल नहीं किया तो वक्त निकालिए और इस फिल्म को ज़रूर देखिए। फ़िलहाल वक्त हो रहा है आपसे अनुमति लेने का 2:30 पर प्रोग्राम एक ही कलाकार सुनना ना भूलिए। और 3:00 आपके लिए प्रोग्राम लेकर आएंगे मैटिनी मेलोडीज़। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दिया खास खबरां। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि एक अनिश्चितता बारे चिंतित युग में भारत लक्समबर्ग विचार एक भरोसे योग रिश्ता है और लक्समबर्ग के प्रधानमंत्री के विदेश मामले बारे मंत्री सोनल पटाना को आकाश फसाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी जोनल काउंसिल की 18वीं मीटिंग की प्रधानता कर रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वालों उर्दू रोजाना अखबार का अतिरिक्त डायरेक्टर तृणमूल कांग्रेस के सदस्य नदीम उल हक ने कहा एक मामले के संबंध में कोलकाता दिल्ली छापेमारी। उसने बताया कि बलार क्षेत्र का सुधार निजीकरण के नहीं समग्र इको सिस्टम में प्रसार के केंद्र थे। अगले टेनिस में मौजूदा चैंपियन आर्मा सावलिंका कार्लोस अल्कराज यूएस ओपन में क्वार्टर फाइनल के छह। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि एक अजिहे युग में जिथे पूरी दुनिया अनिश्चितता बारे चिंतित है, भारत के लक्समबर्ग विचकार एक भरोसे योग रिश्ता है। डॉक्टर जयशंकर ने एक गल आज नई दिल्ली में लक्समबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामले और विदेशी व्यापार मंत्री जेवियर बटालन मुलाकात दौरान कही। उन्होंने कहा कि श्री बेटी की यात्रा भारत के लक्समबर्ग विचकार बदती है दुनिया हिंदी भागवाली दर्शाती है। डॉक्टर जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में आपने लक्समबर्ग यात्रा में याद किया और कहा कि हाल ही के सालों में 2013 में नेताओं ने एक दूसरे कई बार गलबात की थी।

0: ने कहा कि व्यापार निवेश माली सहयोग संबंध का केंद्र है। उन्होंने कहा कि यहां पर पड़े गणित पुलार डिजिटल और चुनिंदा पक्षी टेक्नोलॉजियों के सहयोग की पहल कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत के लक्समबर्ग बचकर सड़क सहयोग भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सप्लाई लड़ी लचकीले पर यूरोप और प्रांता के मामले में छूट मुक्त व्यापार समझौते की प्रवानगी नया दिशा खुल गई है। विदेश मंत्री ने लक्समबर्ग का एफटीए में मजबूत हमारे टीम ने धन्यवाद किया। अपने संबोधन में लक्समबर्ग के प्रधानमंत्री विदेश मामले और विदेशी व्यापार बारे मंत्री जेवियर बेटेल ने कहा कि लक्समबर्ग का भारत में एक भरोसेमंद और ईमानदार रिश्ता है। उन्होंने कहा कि दोनों धड़ों ने संबंधों को डूबा करने में बहुत कुछ किया। श्री बेटेल ने शांति स्थापित करने वाले वजह भारतीय लीडरशिप की भूमिका और टकराव तो प्रभावित देशों विचार रबता बनाने की कोशिश करने का धन्यवाद किया। श्री बेटेल और सबके भारत के त्रिवेणा दौरे से नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी जोनल काउंसिल की अठाईवी मीटिंग की प्रधानगी कर रहे हैं। यह मीटिंग सुबह 11 बजे पणजी में शुरू हुई। श्री शाह गोवा के त्रिवेणा दौरे से अधिकारियों ने दसाया कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और दादरा नगर हवेली के दमन प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल मीटिंग में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के सीनियर अधिकारी भी मौजूद हैं। मीटिंग में अंतर्राज्यीय तालमेल सहयोग शासन मेंबर राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों विचार सत्तरवे ढंग तरीके को साझा करने संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि अंतर्राज्यीय काउंसिल सकत्रेत मीटिंग में हिस्सा लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मदद भी पेशकारियां देंगे। बाद में श्री शाह गोवा पुलिस को राष्ट्रपति वे कलर्स प्रदान करेंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उर्दू रोजाना अखबार मशरक से डायरेक्टर तृणमूल कांग्रेस के संसद मेंबर नदीम हाईकमान जुड़े एक मामले के संबंध में कोलकाता दिल्ली और रांची में सात इमारतों पर छापेमारी की थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट वालों दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दायर की थी। जांच एजेंसी ने कहा है कि यह मामला कथित तौर पर फिरको व्यापारियों ने उत्साहित करने वाली सामग्री के प्रसारण के प्रकाशन के इल्जाम संबंधित है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कहा है कि इस मामले में गैर कानूनी लैंड डेन बैंक साहब नकदी लैंड डेन और शक्की वसूलियां तो प्राप्त फंडा के इल्जाम भी शामिल है। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत डिगण वाली थान का दोबारा दौरा किया ता जो सुरक्षा उपाय और चल रहे बचाव कार्यों की समीक्षा की जा सके। पत्रकारों गलबात करते हुए उन्होंने कहा कि ढाके पुरानी बहुमंजिला इमारत के स्थान पर करीब 80% मलबा हटा दिता गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 12 लोगों को कर लिया गया जिन्हों में 6 की मौत हो गई जबकि 6 की हालत स्थिर है।
1: 80% मलबा हट चुका है। केवल बेस कैंप जितना मलबा रहा है अभी इसमें 12 लोग मिले हैं जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी की स्थिति में है। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि दुखदायक घटना इमारत के मालिक की लापरवाही कारण वापरी है। उन्हें भरोसा दिया कि मालिक विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
1: कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाई करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों की लापरवाही कारण यह हादसा हुआ उन्होंने बख्शा नहीं जाएगा और उन्होंने तुरंत मुअत्तल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ही मुअत्तल करने के हुक्म जारी किए जाएंगे। केंद्र सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस घटना वाली थान का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रम बल एनडीआरएफ की टीम लगातार कार्रवाई में लगी हुई है।
2: राष्ट्र साहब का चीफ सेक्रेटरी साहब का आदेश मिला है। जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्त से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहां से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद देना होगा ताकि ये नई मर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ न कर पाए।
0: इस दौरान इमारत के मालिक विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री दफ्तर ने कहा कि दिल्ली में गैर कानूनी तीन मंजिला इमारतों में तुरंत सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सीएमओ ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के वसनीकों की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही के मामले में किसी ने भी बख्शा नहीं जाएगा। यह खबरें आकाशवाणी को सुन रहे हो।

0: चार मकामात पर माल बरदार ट्रेन खिदमात को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी जोबाट टांडा नई रेल लाइन को भी वक्फ करेंगे, जो अलीराजपुर के दूरदराज और कबायली इलाकों को कौमी रेल नेटवर्क से मरबूत करेगी। महाराष्ट्र में मुंबई में जनाब मोदी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करेंगे। दिल्ली की वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता ने सलामती के इकदामात और जारी बचाव कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में मुनहदिम हुई इमारत के मकाम का आज एक मरतबा फिर दौरा किया। नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दहाइयों पुरानी कसीर मंजिला इमारत के मकाम से तकरीबन 80% मलबा हटा लिया गया है। वज़ीर-ए-आला ने मुत्तला किया कि 12 अफराद को निकाला गया था, जिनमें से 7 की मौत हो गई है। मोहतरमा रेखा गुप्ता ने कल भी जाय हादसा का दौरा किया था और कहा था कि हुकूमत मुतासरा तलबा के वालदेन से राब्ते में है।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: वज़ीर-ए-आला ने कहा कि यह अलमनाक हादसा इमारत के मालिक की गफलत की वजह से पेश आया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की वज़ीर-ए-आला ने मजीद कहा कि इलाके में ऐसी खतरनाक इमारतों की निशानदेही की जाएगी और उन्हें मुनहदिम किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि उन ओहदेदारान को जिनकी कोताही की वजह से यह हादसा पेश आया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाएगा। दिल्ली हुकूमत के वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज जाय हादसा का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कुदरती आफत से मुतालिक कौमी फोर्स NDRF की टीम कार्रवाई में मुसलसल मसरूफ है। जनाब सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आला ने कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वे इस मामले के जिम्मेदार सभी अफराद को फौरी तौर पर मुअत्तल करें। दिल्ली की वज़ीर-ए-आला के दफ्तर ने कहा है कि दिल्ली में गैर कानूनी 5 मंजिला इमारतों को फौरी तौर पर सील किए जाने की हिदायत दी गई हैं। CMO ने मजीद कहा है कि वज़ीर-ए-आला ने वाजे कर दिया है कि दिल्ली के बाशिंदों की सलामती से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और गफलत के मामलात में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में एक इमारत के गिरने के वाक़े के बाद जारी बचाव और राहती कार्रवाइयों के पेश नज़र आज सफदरजंग अस्पताल से धौला कुआं की तरफ जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक मुतासिर रहेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरतहाल के दौर में भारत और लग्जमबर्ग के दरमियान काबिल एतमाद ताल्लुकात हैं। आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी तिजारत सरमायाकारी और माली इश्तराक के शोबों में मजीद मुस्तहकम हो रही है। इसके अलावा खला डिजिटल और माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजी के शोबों में भी बाहमी तआवुन के नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तजारती समझौते के लिए लग्जमबर्ग की मजबूत हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह समझौता बाहमी तआवुन के नए इम्कानात और मौके पैदा करेगा। लग्जमबर्ग के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा जेवियर बेटल आज सुबह 3 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह आज पनजी में मगरबी इलाकाई कौंसिल की 28वीं मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। ये कौंसिल गोवा गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों दादर और नगर हवेली और दमन और दीव पर मुश्तमिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस मीटिंग में गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत, गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और दीगर अफराद शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा दादर और नगर हवेली और दमन दीव के नुमाइंदे भी हिस्सा ले रहे हैं। इस मीटिंग में मरकज़ रियासतों के मुश्तरक मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इसके अलावा मुश्तरक कार्रवाई की ज़रूरत वाले मामलात भी ज़ेरे गौर हैं। बाद में जनाब शाह गोवा पुलिस को सदर जमहूरिया का पुलिस कलर अवार्ड पेश करेंगे। पणजी से निखिल उपाध्याय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मोहम्मद आजम खान।
0: नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने नौजवानों से अपील की है कि वो मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ मजबूत मौकफ अख्तियार करें और मनशियात से मुबर्रा मुआशरा बनाने में सरगर्म रोल अदा करें। आज गुवाहाटी में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने मनशियात के खिलाफ अहद दिलाया और नौजवानों पर जोर दिया कि वह मनशियात के खिलाफ जद्दोजहद के लिए पुरअज़्म रहें। नेपाल की कुदरती आफत के खतरात को कम करने और उसके बंदोबस्त से मुतालिक कौमी अथॉरिटी के मुताबिक नेपाल तिब्बत में तबाहकुन अचानक सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 1355 हो गई है। सिक्योरिटी एजेंसियां खासतौर से भोटे को

मुंशी और त्रिशूली दरिया कॉरिडोर से मुत्तसिल पन बिजली प्रोजेक्टों में लापता अफराद की खातिर तलाश और बचाव कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। नेपाल में सैलाब में जान गंवाने वालों की याद में आज कौमी शोक का अहतमाम किया जा रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अखबार मशरक प्राइवेट लिमिटेड, जो एक उर्दू रोजनामा है, नीज़ उसके डायरेक्टर और टीएमसी रुकने पार्लियामेंट नदीमुल हक से मुतालिक एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में

0: heavy rainfall. The impact of the rain was clearly visible in the capital city Bhopal, where two gates of the Kalia South Dam had to be opened once again. Before this, four gates were opened on Saturday night to release water. Abhinav Goyal, Akashwani News, Bhopal.
1: The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Bihar, Madhya Pradesh, eastern Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal and parts of northeast India till tomorrow. The Met Department said thunderstorms and lightning conditions will continue over Andhra Pradesh, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh and Tamil Nadu till tomorrow. The death toll from the devastating Nepal-Tibet flash floods has reached 1,355. According to the National Disaster Risk Reduction and Management Authority, the highest number of fatalities have been reported in Chitwan, followed by Navalparasi East. In tennis, defending champions Aryna Sabalenka and Carlos Alcaraz have stormed into the quarterfinals of the US Open. In the women's singles round of 16 yesterday, Belarusian top seed Aryna Sabalenka defeated American Taylor Townsend 6-4, 6-3 at Arthur Ashe Stadium. Sabalenka will face Czech player Linda Noskova in the quarterfinals tomorrow. In another round of 16 clash, Spain's Carlos Alcaraz thrashed American Tommy Paul in the pre-quarterfinals at Arthur Ashe Stadium. Benchmark domestic equity indices extended losses during the afternoon session today. The Sensex declined 467 points to 76,049, while the Nifty fell 138 points to 23,760 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah chairs 28th meeting of Western Zonal Council in Goa. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar holds bilateral meeting with Luxembourg Deputy Prime Minister Xavier Bettel, says in an era where whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have a trusted relationship. Death toll in Delhi's building collapse rises to 7. MCD South Zone Deputy Commissioner for Engineers suspended. Enforcement Directorate conducts searches at 7 premises linked to TMC MP Nadimul Haq's Urdu Daily over money laundering. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध हैं। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आर्यना सबालेंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें समन्वय और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर विशेष बल दिया गया।
3: बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। वे 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मुंबई

0: में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने उपस्थित सभी लोगों को नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्य कृतियों का असमिया में अनुवाद करने की विश्वविद्यालय की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉक्टर जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
1: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
0: डॉक्टर जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार एक दूसरे से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतरिक्ष, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं को भी तलाश रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और लग्जमबर्ग के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर श्री बेटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। श्री बेटल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया और सुरक्षा उपायों तथा जारी बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
3: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अभियान में निरंतर काम कर रही है।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहां से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर, और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा ताकि ये मनमर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना कर पाए।
0: इस बीच दक्षिण जोन के एमसीडी उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायक अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। भवन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया है कि मलबे की भारी मात्रा के कारण बचाव अभियान शाम तक जारी रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ बचाव अभियान के लिए विशेष और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है।
5: इसमें मतलब स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन में बेसिकली बीच

0: कटिंग सिस्टम, कटिंग सिस्टम यूज करते हैं जो है इक्विपमेंट्स है सीमेंट और कंक्रीट काटने के लिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं इनको स्लैब्स को रिमूव करने के लिए, इन्फ्लेक्टेबल बैग्स वगैरह भी है जो इस्तेमाल करते हैं, और शोरिंग सिस्टम है कि हाइड्रोलिक शोरिंग है वुडन शोरिंग है, ये डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ पर स्ट्रक्चर है क्या रिक्वायरमेंट है वो करती है। और डिटेक्शन सिस्टम, इसमें केनाइन है या लाइट डिटेक्टर्स इक्विपमेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि ये मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु एक मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ वायु जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
2: ये उन प्रयासों को पहचानने के लिए है जो पूरे देश में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता बनी रहे और प्रदूषक तत्व PM10 तथा PM2.5 का स्तर उन सीमाओं तक नीचे लाया जाए जो नियामकों द्वारा तय की गई है। स्वच्छ हवा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है बल्कि ये एक व्यवहारिक लक्ष्य है जिसे समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम के माध्यम से हासिल किया जा सका है।
1: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करने चाहिए। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 7 वर्ष में 35 लाख अंतर्राष्ट्रीय मरीजों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@airnewshindi और पब्लिक पर @airnewsalerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। आज शाम दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने 2 मॉनसून सिस्टम ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का असर राजधानी भोपाल में भी साफ नजर आया। यहां कलियासोत बांध के 2 गेट एक बार फिर खोलने पड़े। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है।
5: पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार समेत 12 जिलों की 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर गंगा के डाउनस्ट्रीम में हाथीदह, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर में नदी के रौद्र रूप से भयावह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पुनपुन और सोन नदी में अभी भी उफान जारी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुनपुन रेल पुल संख्या 21 पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने मुंगेर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: उधर नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363 हुई है। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान

0: गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 डूरंड कप के विजेता टीम वेस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। टेनिस में आरेना सबालेंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त आरेना सबालेंका ने अमरीकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंड को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमरीका के टॉमी पॉल को पराजित किया। भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01123140812371717106 और 23314444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आरेना सबालेंका तथा कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, आप अपने घड़ी का वक्त मिला सकते हैं और हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 2:30 और 25 सेकेंड और ये वक्त है प्रोग्राम एक ही कलाकार का। आज के हमारे कलाकार हैं बॉलीवुड के जाने माने फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर बी आर इशारा।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर दोस्तों इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है कि कलाकार, जिसमें बात हो रही है बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर बी आर इशारा की। दोस्तों, बी आर इशारा एक बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और साथ में पटकथा लेखक भी थे, जिन्हें खास तौर पर मुख्य रूप से 1970 के दशक की बोल्ड और लीक सेट कर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता था। उन्होंने 1964 से 1996 के बीच लगभग 35 बॉलीवुड की फिल्में बनाईं और अपनी फिल्में, जिनमें चेतना, लोग क्या कहेंगे, मिलाप, मान जाइए, घर की लाज, वो फिर आएगी, सौतेला भाई, दिल की राहें, मेरे हम सफ़र, दो कैदी, एक नज़र, एक नारी दो रूप और धरती कहे पुकार के जैसी फिल्में थीं। दोस्तों, बी आर इशारा बॉलीवुड के एक पॉपुलर फिल्म मेकर्स में से एक थे और इसके साथ ही वो फिल्म इंडस्ट्री के एक मंजे हुए स्क्रिप्ट राइटर भी थे। 70 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड में बोल्ड कंटेंट से धूम मचाई। असल में बी आर इशारा ही वो एक ऐसे डायरेक्टर थे जो कम बजट में बोल्ड फिल्में बनाने का जो ट्रेंड था वो फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए थे। उनकी एक ऐसी पहली सुपरहिट फिल्म चेतना थी जो 1970 में रिलीज हुई। दोस्तों, एक युवा कॉल गर्ल की इस कहानी ने पूरे देश में उस वक्त तहलका मचा दिया था। फिल्म में रेहाना सुल्तान, शत्रुघ्न सिन्हा और अनिल धवन जैसे कलाकार थे। आइए आपको सुनाते हैं इसी फिल्म का गीत मुकेश की आवाज़ में, जैसे लिखा

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से दोस्तों इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही कलाकार और जिसमें आज बात हो रही है पीआर इशारा की। दोस्तों पीआर इशारा जी का जन्म चिंतपूर्णी ऊना हिमाचल प्रदेश में 7 सितंबर 1934 को हुआ। बॉम्बे में अपनी किस्मत आजमाने के लिए घर छोड़ने के बाद वो एक फिल्म डायरेक्टर बन गए, पर यह सब उनके लिए इतना आसान नहीं था। इससे पहले उन्होंने एक फिल्म स्टूडियो में चाय देने तक का काम किया, फिर बाद में फिल्म से जुड़े कुछ छोटे मोटे काम वो करने लग गए। और कुछ उस वक्त के ऐसे डायरेक्टर्स थे जिनको असिस्ट करने की भूमिका तक वो पहुंच गए। उन्होंने बासु भट्टाचार्य के अलावा दुलाल गुहा जैसे फिल्म डायरेक्टर्स को असिस्ट किया। उन्होंने शुरुआत में कई लेखकों की मदद भी की और बाद में वो खुद एक बेहतरीन लेखक बन गए। और दोस्तों आपको बता दें कि बी आर इशारा जी का असली नाम रोशनलाल शर्मा था। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बी आर इशारा रखा। दोस्तों अब हम आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज़ में प्रोग्राम का ये अगला गीत।

और दोस्तों, प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, बी आर इशारा जी को बोल्ड और समाज में बर्निंग इश्यूज पर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता था। उन्होंने हिंदी फिल्मों में बोल्ड फिल्मों की शुरुआत की। जरूरत और चेतना जैसी फिल्मों से उन्होंने 8वें दशक के आरंभ में हिंदी फिल्मों के जो पारंपरिक ऑडियंस थे उनको झकझोर दिया। वो अक्सर नए कलाकारों को लेकर बोल्ड फिल्में बनाते थे। दोस्तों, बी आर इशारा जी को एक ऐसे डायरेक्टर के रूप में जाना जाता है जिन्होंने उस दौर में जो स्ट्रगलिंग और न्यू कमर एक्टर एक्ट्रेसेस थे उनको मौका दिया, जिनमें रेहाना सुल्तान, परवीन बॉबी, अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी, रीना रॉय, अनिल धवन, शत्रुघ्न सिन्हा, रजा मुराद, डैनी, विजय अरोड़ा और राज किरण जैसे कलाकारों के करियर के शुरुआती दौर में बहुत बड़े बड़े मौके दिए। और दोस्तों, सुनने में आता है कि एक्ट्रेस परवीन बॉबी को सबसे पहला जो ब्रेक मिला था वो बी आर इशारा जी ने ही दिया था।

दोस्तों, बीआर इशारा जी 70 के दशक के वो फिल्म मेकर थे जिसने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी फिल्मों से क्रांति ला दी। उन्होंने कम बजट में सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बनाने का जो ट्रेंड है वो शुरू किया। उस दौर में वैश्यवृत्ति जैसे मुद्दों पर समाज की सच्चाई को इतने बोल्ड अंदाज में फिल्मों में प्रस्तुत करना अपने समय से काफ़ी आगे माना जाता था। दोस्तों, बीआर इशारा ने रिश्तों, सामाजिक वर्जनाओं और मानवीय भावनाओं की जटिलताओं को फिल्मों में उजागर किया। उन्होंने साल 1972 में अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी के साथ फिल्म एक नज़र बनाई, जिसमें एक युवा कवि वैश्यवृत्ति को मजबूर युवती से विवाह करना चाहता है। और इसी फिल्म का आखिरी गीत जो इस प्रोग्राम का है वो हम आपको सुनवाते हैं, आवाज़ें किशोर कुमार और साथियों की है।

और दोस्तों, अब अपने दोस्त अनुपम हरियाणवी को इजाजत दीजिए। कुछ ही पलों में आपके लिए मैटिनी मेलोडीज ये प्रोग्राम लेकर आएंगी अंजू पांडे।

अभी आप सुन रहे थे एक ही कलाकार अनुपम जी के साथ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दोपहर के 3 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं प्रोग्राम मैचिनी मेलोडीज। और आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आप सभी का अभिनंदन स्वागत है।

जी हाँ, हमने तो आपको बुला लिया प्रोग्राम मैटिनी में लेडीज़ में, और आप कैसे उसमें आ चुके हैं ये इसका पता तो हमें तभी चलेगा जब आप अपने संदेश हम तक पहुंचाएंगे। और संदेश भेजने का तरीका तो आपको भी पता है, मेल के ज़रिए। मेल भेजने के लिए मेल आईडी की भी ज़रूरत पड़ती है। हमारे पुराने दोस्तों को तो याद ही हो गई है, लेकिन हमारे जो नए दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस सफ़र में, हम सफ़र बनना चाहते हैं, उनके लिए हम बता दें हमारी मेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। और ये जो प्रोग्राम है मैटिनी मेलोडीज़, इसमें हम आपके लिए गोल्डन इरा के गीत चुन चुन कर लेकर आते हैं। 1913 में बनी दादा साहब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद को भारतीय सिनेमा की शुरुआत मान लेना चाहिए, ऐसा कई लोग कहते हैं। कोलकाता में हीरामन सेठ, जो कि फ्लावर ऑफ पार्शिया 1998 की बात है, और महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र सखाराम भाटवाड़केकर, ये पहले ही बना चुके थे फिल्में। लेकिन इसी तरीके से 1912 में आरजी टोर्नी ने एक फीचर फिल्म बनाई जिसका वो निर्देशन उन्होंने किया था। लेकिन अगर इन सबको हम भुला दें तो बात नहीं बनेगी, इन सबका योगदान भी मायने रखता है। खैर, शुरुआत हुई जिस तरीके से शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज जो ब्लैक एंड वाइट फिल्म है वो कल रंग बिरंगी हो जाएगी। आज जो चलचित्र एक स्थिर रूप में दिखाई देते हैं, कल उसमें बहुत सारे एनिमेशंस आ जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, कुछ ऐसा ही जलवा, ऐसा ही रूप हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने भी देखा। अपने आप को समय के साथ उसने ढाला, बदला, और आज सिनेमा का एक अलग रूप हमारे सामने आया है। लेकिन इस अलग रूप के सामने हम अपने उस पुराने रूप को कभी नहीं भूल सकते, और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जड़ें हमेशा हमारे साथ रहती हैं और साथ देती भी हैं। सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, हिंदी सिनेमा अकेला था जिसने अखिल भारतीय स्तर पर वर्चस्व स्थापित करने का एक सपना देखा था। ऐतिहासिक कारणों से मुंबई नगरी हिंदी सिनेमा का केंद्र ही नहीं बनी, बल्कि अन्य जो भाषाई सिनेमा है उनके केंद्रों को वो पछाड़ कर आगे भी निकल गई। गैर हिंदी सिनेमा को क्षेत्रीय सिनेमा कहा जाने लगा, ठीक वैसे ही जैसे हिंदी भाषी गैर हिंदी भाषाओं को क्षेत्रीय दर्जा दिया करते थे। और इसी तरीके से जो मुंबई नगरी थी, आज की जो पहले के अगर हम बात करें तो वो बम्बई थी। पहले उसको बम्बई नगरी कहते थे, आज मुंबई नगरी है, जहाँ पर ऐसे ऐसे सितारों ने जन्म लिया, ऐसे ऐसे सितारों ने अपने कला का जलवा बिखेरा कि आज भी वो हजारों करोड़ों लाखों दिलों के चहेते बने हुए हैं।

मुकेशी, लता और गीता जी की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म जिस देश में गंगा बहती से एक खूबसूरत सा गीत, और आपके संदेश भी हम तक पहुंच रहे हैं। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाबख्श, शेख राविया शेख और शेख रही मुन्ना जी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। विपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा अदिति, राधे दीपक जी हमारे साथ हैं, और वीरनगांव गुजरात से जीत भापसर, प्रमिला भापसर जी हमारे साथ हैं और इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। सुदर्शन मुखी, नीता मुखी, सिमरनजीत, शांति नगर।

सोनीपत से हमारे साथ है ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला गीत हमने जो लिया है, फिल्म है दिल अपना और प्रीत पराई, आवाज़ लता मंगेशकर और गीता दत्त की।

दिल अपना और प्रीत पर आई लता जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत, और ऐसे ही एक से एक गीत हमारे हिंदी सिनेमा में हैं जिन्हें हम कभी भी अपने दिल से नहीं निकाल सकते, और भला निकाल भी क्यों, क्योंकि वो तो हमारे लिए एक अनमोल धरोहर है और धरोहर को सहेज कर रखना तो हमारा फ़र्ज बनता है। तो बस कोशिश हमारी यही रहती है इस प्रोग्राम में कि आपको हम अपने जो फिल्मी सफ़र है, अपनी फिल्मी दुनिया है, उसके उस दौर में लेके जाएं, वो सुनहरा दौर आप तक फिर से लेकर आएं, वो बातें, वो गीत, वो नगमे आपको फिर से सुनवाएं जिनको दिल सुनने की हमेशा बार बार इच्छा जाहिर करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कोशिश जो एक छोटी सी थी, उस दौर के कुछ गीत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, और इस प्रोग्राम में आपको हमेशा इसी तरीके के गीत सुनाई देंगे। एक और खूबसूरत सा गीत मैंने चुना है, फिल्म है फिर सुबह होगी, मुकेश और आशा जी की आवाज़ में।

और दोस्तों, अब वक्त हो रहा है कि मुझे आपसे अनुमति लेनी है। फिर जल्दी ही आपकी और हमारी मुलाकात होगी एक नई फिल्म, एक नए कलाकार और एक नए सफ़र के साथ। तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए, लेकिन जाते जाते आपको सुनवा रही हूँ आशा जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म फागुन से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: शौक।
1: आज हम जिसके रूबरू हैं उस शख्सियत के बारे में तमहीद के तौर पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि प्रोग्राम का आधा हिस्सा उसकी तमहीद में मैं ले सकता हूँ तो इसमें हरगिज़ कोई एग्जेजरेशन या मुबालगा नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे साथ जो ख़ास मेहमान प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब स्टूडियो में हैं, सबसे पहले तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ।
2: जी आदाब, मैं भी सभी सुनने वालों को आदाब पेश करना चाहूँगा। जी,
1: आपकी हैसियत एक ब्रॉडकास्टर की रही है, ब्रॉडकास्टर के तौर पर आप रहनुमाई करते रहते हैं और मास कॉम के प्रोफेसर हैं आप जामिया। इसके अलावा आप ड्रामे लिखते हैं, दास्तानों के लिए आपको याद किया जाता है जो आपकी पेशकश हैं, फीचर्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आपने कई अवार्ड्स आकाशवाणी से लिए हैं, आप एक अच्छे उस्ताद माने जाते हैं। तो ये बताएं कि अगर दानिश इकबाल को अपना तारुफ किसी एक हैसियत से कराना हो तो वो हैसियत कौन सी होगी?
2: ये बड़ा मुश्किल सवाल है इसका जवाब हमारे पास नहीं
1: आसान
2: है।
1: सवाल नहीं किया जा सकता।
2: देखिए, वो कहते हैं ना कि हर आदमी के अंदर होते हैं दो चार आदमी। तो देखिए, एक तो आप वो होते हैं जो आप होना चाहते हैं, एक वो आप होते हैं जो आपको पता नहीं होता है, और एक वो आप होते हैं जो दूसरे आपको समझते हैं। तो अब इसमें जो हम होना चाहते हैं तो उसका तो तारुफ नहीं करा सकते क्योंकि वो हो नहीं पाए।
1: जी,
2: तो वो तो अभी भी मतलब कौन
1: वैसे क्या होना चाहते थे ये तो हम भी जान सकते हैं।
2: देखिए, होना ये चाहते थे कि मतलब आज के दौर में फनकार होना एक बहुत मुश्किल काम है, आज के दौर में एक राइटर होना बहुत मुश्किल काम है। और हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो टॉलस्टॉय के बारे में पढ़ा था, दोस्तोयेवस्की के बारे में पढ़ा था, तो ऐसा लगता था कि जो लिटरेचर है और जो आपका फ़न है, जो आपकी कोशिशें हैं, इससे समाज बदला जा सकता है, ये सारी चीज़ें समाज पे असरअंदाज होती हैं। लेकिन फिर बहुत सी नई चीज़ें आ गईं और वो असरअंदाज होने लगीं। लेकिन ये जो हमारा यकीन था यानी लिटरेचर में या लिटरेचर की जो मुख्तलिफ उसके तरीक़े होते हैं, लिटरेचर को अवाम तक, जैसे मैं ड्रामे को लिटरेचर ही मानता हूँ, हालांकि ड्रामा एक परफॉर्मिंग आर्ट है, लेकिन ड्रामा दरअसल लाता क्या है आप तक। और इसी तरह से जो मास मीडिया है उसमें खबरों के अलावा जो दुनिया में हो रहा है वो तो आपको बताया जाता है, उसके अलावा जो चीज़ें आप तक पहुँचाई जाती हैं वो क्या होती हैं? तो या तो मालूमात होती हैं, साइंसी मालूमात होती हैं,
1: मैटर ऑफ फैक्ट,
2: हाँ, या फिर वो लिटरेचर से ही मुतालिक चीज़ें होती हैं। तो वो जो जिसे हम हायर लिटरेचर कहते हैं, वर्ल्ड लिटरेचर, जिसके बारे में कहा जाता है कि जितना असर दुनिया पे मज़ाहिब का हुआ है, मज़हब ने बदला इंसान को अखलाकियात से लेके और
1: मतलब
2: तो इसी तरह से जो ग्रेट लिटरेचर है उसने भी दुनिया को बदला है। बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जिसे आज हम मज़हब कहते हैं वो कभी ग्रेट लिटरेचर था।
1: जी जी, तो आपने शुरुआत यहाँ से की कि आप फनकार बनना चाहते थे, आप मुसन्निफ बनना चाहते थे, लेकिन ये सब तो आप हैं
2: नहीं, ये सब नहीं हो पाया।
1: तो आपको इन सब में खासा अमल दखल है, मुझे अंदाज़ा है और दुनिया भी जानती है, लेकिन वो कौन सी कमी है जिससे आपको लग रहा है कि आप ये नहीं हो पाए?
2: देखिए, दुनिया तो समझती है कि भाई दानिश इकबाल साहब एक राइटर हैं, लेकिन क्या दानिश इकबाल साहब भी अपने को राइटर समझते हैं? नहीं समझते। तो दानिश इकबाल साहब कोशिशें करते रहते हैं और वो कोशिशें
1: क्यों नहीं समझते,
2: कोशिशें कामयाब होती नज़र नहीं आती। देखिए, होता क्या, आपने एक ड्रामा लिखा
1: जी,
2: और आप समझते हैं कि आपने बहुत अच्छा ड्रामा लिख दिया, और फिर उसके शोज़ होते हैं, तो 10 शोज़ हो गए, 20 शोज़ हो गए, तो अगर वो बहुत अच्छा होता तो वो अभी भी हो रहा होता
1: जी।
2: अगर उसकी पेशकश नहीं की जा रही है तो इसका मतलब ये कि वो ड्रामा नहीं है जिसकी ज़रूरत थी। और दानिश इकबाल साहब ने जो लिखा और जो आवाम को चाहिए है, जो मुल्क को चाहिए, समाज को चाहिए, उनको शायद कुछ और चाहिए और हम कुछ और दे रहे हैं।
1: जी जी,
2: तो अब यहाँ पे ये है कि हम तो समझ रहे हैं कि हम कर रहे हैं वो काम
1: जी,
2: लेकिन क्या वो काम हो पा रहा है? क्या हम दानिश इकबाल साहब कभी दोस्तोयेवस्की हो पाएंगे, या अब कोई भी इंसान क्या दोस्तोयेवस्की हो पाएगा?
1: तो जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपको सुनने वाले, आपके चाहने वाले, आपके प्रस्तार हैं, उनके रिस्पांस के हिसाब से आप अपनी चीजों को जज कर रहे हैं। मैं आपको खुश करने के लिए एक बात कहना चाहता हूँ।
2: जी जी जी फरमाएं।
1: वो ये कि अगर,
2: बहुत दिन से अगर, हम खुश नहीं हुए हैं,
1: नहीं, आज मैं आपको ये मौका आज देना चाहता हूँ।
2: नवाजिश।
1: लता और रफी के गाने कई बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे, बहुत मेलोडियस।

0: नए अंदाज से अगर पेश करें तो मैं समझता हूँ इस हिसाब से रतन हैदर की मशहूर कहानी है कलंदर
1: जी,
0: जो कि सक्सेना साहब की कहानी है, और वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं वो मैं समझता हूँ उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। इसी तरह से जंगली बूटी हमारी अमृता प्रीतम की बहुत मशहूर कहानी है जिसपे एक अवार्ड भी मिला मुझे। इसी तरह एक पंजाबी एक कहानी है बैल जो धरती नीचे, तो एक बाप अपने बच्चे के लिए ख़ानदान के लिए क्या क्या करता है और कितनी खामोशी से करता है उस कहानी में इसे बयान किया गया है और बहुत खूबसूरती से बयान किया गया। तो मैं समझता हूँ ये जो प्रोडक्शंस हैं, जो ऐसी कहानियाँ थीं जिन्हें लोगों ने नज़रअंदाज कर रखा था, बहुत ज़्यादा तवज्जो
1: उस शक्ल में नहीं आई थी जिसमें आपने उन्हें ढाला।
0: हाँ देखिए, ऐसी बहुत खूबसूरत कहानियाँ हैं हर जबान की जो बहुत खूबसूरत हैं, वो सिर्फ वो लोग जानते हैं। तो जब मैं प्रोडक्शन करता था और मैं एक्टिव था ड्रामे में, तो मैं देखिए लोगों से पूछता था, हिंदी लिटरेचर वालों से पूछता था, हिंदी साहित्य वालों से, कि इस साल की 3 बेहतरीन कहानियाँ बता दीजिए, ठीक है। उर्दू वालों से पूछता था कि 3 बेहतरीन अफसाने बता दीजिए, और अंग्रेज़ी वालों से पूछता था, और फिर मैं कोशिश करता था कि उन कहानियों को मैं पढ़ूँ, और अगर वो सारा ज़माना कह रहा है कि ये बेहतरीन कहानियाँ हैं तो ये बाकी अवाम तक भी पहुँचनी चाहिए। अब वो कहानी छपी हुई तो नहीं पढ़ेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता, बहुत से ऐसे लोग हैं होममेकर्स हैं। हाँ नहीं नहीं, अब जैसे एक औरत है अपने घर में काम कर रही है और वो कहाँ जाएगी रिसाले पढ़ने और किताबें पढ़ने, तो रेडियो से आ रहा है सुन लेगी। तो इसी तरह से बहुत से लोग हैं जो विजुअली चैलेंज्ड हैं, ऐसे लोग हैं जो किसान हैं, मजदूर हैं या कारीगर हैं, रेडियो बहुत सारे ऐसे लोग सुनते हैं जो बाल काट रहे होते हैं और पूरे टाइम रेडियो सुन रहे होते हैं, या जरदोजी का काम कर रहे हैं और पूरे टाइम। तो हमारे देखिए टारगेट जो है वो लोग हैं जो आम इंसान है। तो इंटेलेक्चुअल्स के लिए कंटेंट क्रिएट करना तो बिल्कुल गुंबद वाली आवाज हो गई, आपने ही आवाज लगाई, आप ही ने सुन ली। जी
1: तो ये तो वो काम थे जो आपने किए। अभी पाइपलाइन में क्या क्या है जो आपके मंसूबों में है और जिसे अमली जामा पहनाने के लिए आप मशक्कत कर रहे हैं, वो क्या चीजें हैं?
0: जी इसके जवाब में एक लंबी आह मुझे भरनी चाहिए थी
1: लेकिन दूसरा
0: आपने बहुत ही जालिम सवाल कर लिया है, तो इससे क्या होगा कि वो सारे दुख दर्द जो हैं बाकी दुनिया तक पहुंच जाएंगे।
1: ना करदा गुनाहों की भी हजरत की मिले दाद।
0: जी जी जी, तो देखिए कोशिशें तो इंसान क्या करता है, पूरी उम्र कोशिशें करता है, और बहुत से लोग समझते हैं कि साहब वो फला साहब बड़े कामयाब हैं, लेकिन आप उन साहब से पूछिए तो वो उन्हीं ने जितनी कोशिशें की उसमें से 5% ही कामयाबी तक पहुंचती हैं। तो हम लोग बहुत से ख्वाब देखते रहते हैं, सबको मालूम है कि बॉलीवुड बहुत कामयाब चीज़ है और बहुत खूबसूरत है। तो अब मेरा इरादा है कि जो गोल्डन पीरियड था हमारा म्यूज़िक का और हमारी फिल्मों का, यानी कि बरुआ से लेके और बिमल रॉय से लेके और गुरुदत्त और महबूब खान और राज कपूर, इस तरह के लोग, इवन कमाल अमरोही, तो इस पीरियड को पैकेज किया जाए और ड्रामे लिखे जाएं, स्टेज पे जो है वो पेश किए जाएं और उसको रिक्रिएट किया जाए। तो जैसे अभी मेरा एक प्रोडक्शन नूर जहाँ पे जा रहा है
1: जी।
0: तो इसी तरह से मैंने मीना कुमारी, मधुबाला, राज कपूर, गुरुदत्त, तो इसमें क्या है कि जो ड्रामे की टेक्निक है वो ड्रामा भी है और वो हमारी कल्चरल हिस्ट्री भी है। तो ये एक तरह का कन्वर्जेंस है, और इसमें यह है कि हो सकता है भाई आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट ना हो, आपको शायरी में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन आपको फिल्मों में इंटरेस्ट है। तो हमारा पूरा मुल्क तो देखिए फिल्म ऑब्सेस्ड है और क्रिकेट ऑब्सेस्ड है, तो क्रिकेट के ड्रामे तो करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये एक नया जॉनरा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जहाँ पर ड्रामे नहीं मुमकिन हो पाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि वही बात दास्तान को दो लोग बैठ के सुना देते हैं, और अगर बजट अच्छा होता है तो उसके साथ कुछ साजिंदे बैठ जाते हैं, सिंगर बैठ जाते हैं, गा लेते हैं, बजट और अच्छा है तो हम डांसर्स को शामिल कर लेते हैं और वो प्रोडक्शन और खूबसूरत हो जाता
1: उसका है। ज्यादा हो जाता
0: हाँ,
1: है।
0: लेकिन हमारा बुनियादी काम तो देखिए कम्युनिकेशन का है, तरसील का है, कि जो वो माहौल था, जो बातें थीं, वो ज़ौक जो है लोगों में बचा रहे और सलामत रहे। इस तरह के बहुत से इजी प्रोडक्शन हमने कर दिए हैं। अब यह है कि देखिए आजकल ड्रामा बहुत महंगी चीज़ हो गई है और 1 लाख रुपए से कम में ऑडिटोरियम नहीं मिलता
1: जी।
0: तो जब आपका पहला शो होता है तो आप 4 लाख रुपए खर्च कर चुके होते हैं, अगर आप सारे टिकट बेच दें तो आपको 40-50 हज़ार रुपये आते हैं, तो भी आप 3.5 लाख के नुकसान में होते हैं
1: जी।
0: तो ये घरपूक तमाशा देखने वाली बात है। इसलिए क्या किया है कि भाई इसे स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में कर दिया, दास्तान गोई में क्या है, ज़्यादा आपको वो नहीं चाहिए
1: जी।
0: आपको सेट नहीं चाहिए, तो आप बैठिए, और आपको वो ऑडिटोरियम भी नहीं चाहिए
1: जी।
0: आप दीवान खाने में, आप ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, आप उसे पेश कर सकते हैं, स्कूल में पेश कर सकते हैं, किसी छोटी महफिल में कर सकते हैं, आप ऑडिटोरियम में भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो फॉर्मेट्स हैं इन पे कोशिश कर रहा हूँ। और ये है कि मैंने ये इस बात को महसूस किया कि जैसे हम लोग कहते हैं कि जवाल आमादा मुआशरा है और हमारी सारी चीज़ जवाल पे हैं और चीज़ें छूट रही हैं, पीछे जा रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो यही क्राइसिस म्यूज़िक वालों का है
1: जी,
0: यही क्राइसिस डांस वालों का है। तो अभी मैंने कई आर्टिस्टों से जब बात की तो हमने रियलाइज़ किया कि अब सीधा डांस भी नहीं पॉपुलर हो सकता है, सीधा म्यूज़िक भी नहीं, उसमें जब तक आप स्टोरी टेलिंग नहीं करेंगे
1: जी,
0: उसके अंदर कोई कहानी नहीं है, वो कुछ कहता नहीं है। इससे पहले क्या था कि कथक जो है अपने उससे कहता
1: भाव
0: था,
1: से
0: भाव से कहता था, समझने वाले लोग मौजूद थे तो वो समझ लेते थे, लेकिन अब ज़रूरत है इस बात की है कि कथक के साथ जो है एक स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट भी शुरू किया जाए। तो ये मंजरी चतुर्वेदी हैं, उनके साथ हमने बहुत से प्रोडक्शंस किए हैं और दिल्ली के जितने भी लीडिंग सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं
1: जी,
0: तो उनके साथ एक कोलैबोरेशन की कोशिश कर रहा हूं ताकि एक थोड़ा सा इकोसिस्टम जनरेट हो।
1: दास्तानों का सिलसिला उसी तरह चल रहा है या
0: दास्तानों का भी चल रहा है?
1: की है
0: नहीं, दास्तानों का अच्छा चल रहा है। हाँ। इसमें यह है कि अगर आप एक फेस्टिवल कर रहे हैं, अदबी फेस्टिवल कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आपने एक डिस्कशन रख दिया, एक मुशायरा रख दिया, तो वैरायटी नहीं होती, तो थोड़ा सा वो वैरायटी भी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, और ड्रामा एक बड़ा फॉर्मेट है तो वो बजट नहीं होता है, तो उसमें क्या है उसी पैकेज में दास्तान गोई आसानी से फिट हो जाती है। और इसमें यह है कि आप शेर व अदब से लेके और तारीख से लेके और तहजीब तक
1: तमाम चीज़ों
0: सारी चीज़ों को आप छू सकते हैं, लेकिन उसमें जितना डिवोशन चाहिए, जितना डेडिकेशन चाहिए, उस लेवल के आर्टिस्ट मिलना बहुत मुश्किल है। तो यही वजह है कि फॉर्मेट अच्छा है और उसकी पजीराई भी अच्छी हो रही है, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही है क्योंकि देखिए नई दास्तान लिखना बहुत
1: वैरायटी नहीं आ रही है उसमें,
0: नहीं ज़्यादातर लोग तो पुरानी चीज़ें सुना देते हैं, तो उससे क्या समाज को मिल रहा है, उससे ये मालूम होता है कि हाँ भाई तब पिद्रम सुल्तान बूद जो है एक ज़माना था, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो सवाल ये है कि आज के ज़माने की चीज़ें उसी अंदाज से अगर पेश की जाएं तो फॉर्मेट वो हो, कंटेंट आज का हो
1: जी, जी,
0: तो हमें दास्तान गांधी से लेके, दास्तान मीना कुमारी से लेके, दास्तान मधुबाला से लेके, आप जो कहें वो हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं काफ़ी दिनों से अम्बेडकर पे काम कर रहा हूँ
1: जी,
0: तो बहुत जल्दी इस बात की भी तवक्को है कि हम उनकी दास्तान भी लोगों को सुना सकेंगे
1: जी। तो ये बाबा साहब पे आप काम कर रहे हैं और साथ ही आप मौलाना आज़ाद पर भी काम कर रहे हैं जहाँ तक
0: मुझे जी जी, मौलाना आज़ाद पे देखिए ड्रामा पहले से मौजूद है, हमारे टॉम अल्टर साहब करते थे, तो ड्रामा तो हमने छोड़ दिया बिकॉज वो तो पहले से एक हिट ड्रामा मौजूद है और अभी सईद आलम साहब उसे करते हैं। तो मैंने इस बात को महसूस किया कि हमारी जो नई नस्ल है, जो हमारे लड़के लड़कियां हैं, जब वो इंटरनेट पे ढूंढते हैं तो उन्हें हमारे अकाबरीन में से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे कुछ इंस्पिरेशन ले सकें, और ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका एक्सेप्टेंस अक्रॉस द स्पेक्ट्रम मौजूद हो। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, जैसे आप गालिब कहेंगे तो साहब एक ज़बान के हैं, उर्दू के हैं, आप किसी और का नाम लीजिए तो पता चलेगा ना वो एक रीजन के हैं। तो अल्लामा इकबाल हैं जैसे, वो बड़े अहम हैं, लेकिन आजकल ये है कि भाई वो एक ज़बान हो बल्कि एक इलाके के हो गए हैं
1: जी।
0: तो एक ऐसी शख्सियत को ढूंढ पाना जिसका इम्पैक्ट हो और उसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग जानते हों, नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक जानते हों, ऐसा कौन हो सकता है? तो मेरी समझ में आया कि मौलाना आज़ाद इस तरह की शख्सियत हैं जिनकी एक अदबी अहमियत भी है और उनकी एक सियासी अहमियत भी है, और ही वॉज ए नेशन बिल्डर। आज़ादी के बाद जो हमारा पूरा तालीमी निज़ाम है उसमें उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा वो उसके अलावा वो एक रिफॉर्मर भी थे
1: जी,
0: और जो उनका रिलीजियस मत उसका भी एक बहुत अच्छा स्पेक्ट्रम मौजूद है कि उन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की, जैसे राजा राम मोहन राय ने रिफॉर्म करने की कोशिश की, ऐसे ही मौलाना आज़ाद ने भी अपने लेवल पे एक रिफॉर्मेशन किया। अब उसे वही लोग जानते हैं जो उस तरह की फिक्र से उनका तारुफ है जानते हैं, तो अब ये बातें लोगों को मालूम नहीं है। तो अब हम कहें अफसोस इस बात पर करते रहें कि लेकिन लोग जानते नहीं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमने क्या कोशिश की लोगों को बराबर करने की और बताने की। तो मैं समझता हूँ कि हम में से हर इंसान का ये फ़र्ज है कि जो भी थोड़े से चमकदार रोशन गोशे हैं, लम्हे हैं, वाकयात हैं, शख्सियात हैं, तो उनके बारे में बात की जाए और पीछे मुड़ के उन्हें देखा जाए। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं एक साल की छुट्टी ले रहा हूँ जिसके लिए
1: जी, और अभी शुरुआत इसकी होना बाकी,
0: इसकी शुरुआत तकरीबन हो चुकी है मतलब बीज लगा दिया है, लेकिन

0: मामले में है अभी संजय। तो जब ये इसमें से कल्ले फूटेंगे, अंकुर निकलेंगे, तो उम्मीद ये है कि एक साल हम इसे शूट करेंगे। जहाँ जहाँ उनके कदम पड़े हम वहाँ जाएंगे, जिस जेल में वो रहे हम वहाँ जाएंगे, जहाँ उनका घर था, जहाँ उनके साथी थे, तो वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट की जाएंगी। और हम ड्रामे की फॉर्म में, जैसे गांधी है अटनबरा साहब की बहुत अहम फिल्म है, तो उस लेवल की फिल्म तो नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है जब हम ड्रामे की फॉर्म में किसी चीज़ को पेश करते हैं।
1: वो एक बड़े बैनर का काम मुख्तलिफ ही होता है।
0: बैनर तो कभी इन चीज़ों में दिलचस्पी लेते नहीं है।
1: जी,
0: ठीक है। तो अब यह है कि हम इसे डॉक्यूमेंट्री की ही फॉर्म में कर सकते हैं। तो इसमें एक ही किरदार होने वाला है और वो मौलाना आज़ाद हैं, और मौलाना आज़ाद में भी उन्हीं की आवाज़ होने वाली है, उन्हीं की तहरीरों से ही वो पूरी डॉक्यूमेंट्री निकाली जाएगी। यानी हम एक लफ्ज़ भी नहीं लिखना चाहते,
1: बहुत
0: उन्हीं तहरीरों
1: से, अदा किए गए लफ्ज़ों से एक मुजस्समा उनका तैयार करेंगे आप।
0: जी जी जी, जी
1: और उससे आपकी बात,
0: आपने इस बात को ज्यादा खूबसूरती से कह दिया,
1: पहुंच जाएगा। नहीं, यकीनन इसे आप मजीद खूबसूरती से कहने वाले हैं, तो मैंने ये मौका पहले ग्रैब किया।
0: जी जी, काश हम कह सकें। देखिए, तसव्वुर जब आप किसी चीज का

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम उर्दू मजलिस, ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 4 बजने को हैं, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

छिंगछुंग चेस्यालाई उन पोसुंग विकास प्रकाश श्रीवास्तव छांगदा ई शो मिंचेन कछुई।

0: 听众朋友们，今天我们的普通话节
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल, और आज मेरे साथ हैं
1: मैं हूं विजेता चतुर्वेदी। सभी का स्वागत और स्वीकार कीजिए मेरे नमस्कार।
0: तो विजेता, आज क्या है खास कार्यक्रम में? सबसे पहले अपने श्रोताओं को ये बता देते हैं, वुमेन्स T20 एशिया कप के बारे में आज खास बात तो होगी ही, साथ ही साथ क्रिकेट में दलीप ट्रॉफी फाइनल का दूसरे दिन के खेल का क्या है हाल और कितना पहाड़ जैसा स्कोर बना चुकी है दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की टीम, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बैडमिंटन की बात करेंगे, चाइना मास्टर्स बैडमिंटन पर नज़र डालेंगे, US ओपन में क्या है चल रहा है खास उसके बारे में जानेंगे, PSL लंदन क्लासिक की बात करेंगे, हॉकी की बात होगी, फुटबॉल में सुब्रतो कप की तो बात होगी ही, साथ ही साथ अंडर 20 टीम की भी

0: उपलब्धि पर आपको जानकारी देंगे और पैरा आर्चरी सीरीज में क्या है खास वो भी आज कार्यक्रम के दौरान हम जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वुमेन्स T20 एशिया कप से।
1: महिला T20 एशिया कप 2026 में मुकाबले अब बेहद अहम दौर में पहुंच चुके हैं। यूएई में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में एशिया की 8 टीमें खिताब के लिए जोर लगा रही हैं। मौजूदा चैंपियंस श्रीलंका ने बांग्लादेश को रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं अब ग्रुप ए में पाकिस्तान के सामने हांगकांग की चुनौती है और पाकिस्तान के लिए ये मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 114 रन बनाए। श्रीलंका की गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश की बल्लेबाजी बहुत बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी। श्रीलंका की ओर से प्रबोधा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल किए और बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। 115 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत भी आसान नहीं रही। एक समय टीम सिर्फ 44 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश बड़ा उलटफेर कर सकती है। यहां से हर्षिता ने शानदार धैर्य दिखाया। उन्होंने नाबाद 48 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर श्रीलंका को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। श्रीलंका ने 19.2 ओवर में 6 विकेट खोकर 115 रन बनाए और 4 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ श्रीलंका ने ग्रुप बी में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। बांग्लादेश के लिए ये हार बेहद निराशाजनक रही क्योंकि टीम ने श्रीलंका के 5 विकेट सिर्फ 44 रन पर गिराकर मुकाबले पर मजबूत पकड़ बना ली है, लेकिन आखिरी चरण में जीत हाथ से निकल गई थी। अब नजरें ग्रुप ए के मुकाबले पर है जहां पाकिस्तान और हांगकांग आमने सामने होंगी। ये मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है। टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत थाईलैंड के खिलाफ जीत से की थी, लेकिन इसके बाद भारत के खिलाफ उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। अब पाकिस्तान की कोशिश होगी कि उस हार को पीछे छोड़कर हांगकांग के खिलाफ जोरदार वापसी की जाए। टीम की कप्तान फातिमा सना पर एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी होगी। पाकिस्तान के पास अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ कई युवा खिलाड़ी भी हैं और टीम की सबसे बड़ी जरूरत होगी कि बल्लेबाजी विभाग दबाव में बेहतर प्रदर्शन करे। दूसरी तरफ हांगकांग की टीम पाकिस्तान के खिलाफ बिना दबाव के खेलने की कोशिश करेगी। टीम की कप्तानी अनुभवी नताशा माइल्स कर रही हैं। ICC के मुताबिक माइल्स हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी में चान का यिंग हांगकांग की प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं और उनके नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 151 विकेट है। हालांकि हांगकांग को भारत के खिलाफ अपने पिछले मुकाबले में 137 रन से बड़ी हार का सामना करना पड़ा। भारत ने 193 रन बनाए थे और हांगकांग की टीम 56 रन पर सिमट गई। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ टीम की बल्लेबाजी में काफी सुधार की जरूरत होगी। पाकिस्तान के लिए समीकरण बिल्कुल साफ है। उसे हांगकांग के खिलाफ मजबूत प्रदर्शन करके सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी स्थिति सुरक्षित करनी होगी। भारत पहले ही ग्रुप ए में लगातार जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान के लिए ये मुकाबला टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ श्रीलंका ने बांग्लादेश को आखिरी ओवरों में मात देकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अब हांगकांग के खिलाफ वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगा। महिला T20 एशिया कप में अब हर मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है और जैसे जैसे सेमीफाइनल की तस्वीर साफ होगी, खिताब की जंग और भी ज्यादा दिलचस्प होती जाएगी।
0: बिल्कुल विजेता महिला T20 एशिया कप में अब हर एक मैच जो है बहुत ही रोमांचक होता जा रहा है। वहीं अगर दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो चेन्नई के MH चिदम्बरम स्टेडियम में ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच खेले जा रहे दिलीप ट्रॉफी फाइनल के दूसरे दिन ईस्ट जोन ने अपनी पहली पारी में 708 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है। दूसरे दिन का सबसे बड़ा आकर्षण रहे कप्तान ईशान किशन, जिन्होंने शानदार 270 रन की मैराथन पारी खेलकर इतिहास रच दिया। पहले दिन 111 रन पर नाबाद लौटे ईशान किशन ने दूसरे दिन भी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने 334 गेंदों में 270 रन बनाए, जिसमें 30 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। ईशान ने अपना दोहरा शतक 270 गेंदों में पूरा किया और वह दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में दोहरा शतक लगाने वाले चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। ईशान किशन को दूसरी छोर का पर कुमार कुशाग्र का शानदार साथ मिला। दोनों ने मिलकर 230 रन की बड़ी साझेदारी की, जो इस संस्करण में सबसे बड़ी साझेदारी रही। कुशाग्र ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 101 रन बनाए। हालांकि 471 के स्कोर पर कुशाग्र के आउट होने के बाद भी ईस्ट जोन का रन बनना जारी रहा। पहले दिन ईस्ट जोन के लिए अभिमन्यु ईश्वरन ने 72, युवा वैभव सूर्यवंशी ने 44 और शिखर मोहन ने 85 रन बनाए थे। सूर्यवंशी और ईश्वरन ने पहले विकेट के लिए 100 रन के साझेदारी कर टीम को तेज शुरुआत दिलाई थी। दूसरे दिन ईशान और कुशाग्र के बाद अनुकूल राय ने 45 रन, मोहम्मद शमी ने 28 रन और मोहम्मद कोनेन कुरेशी ने 40 रन की उपयोगी पारियां खेली और ईस्ट जोन ने 163 ओवर में 708 रन बनाए और पूरी टीम आउट हो गई। साउथ जोन की गेंदबाजी की बात करें तो त्रिपुराना विजय अपने सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 विकेट लिए। चामा मिलिंद और श्रेयस गोपाल को 2-2 विकेट मिले, जबकि शेख रशीद और अन्य गेंदबाजों को 1-1 सफलता मिली। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज 25 ओवर में 140 रन देने के बावजूद कोई विकेट नहीं ले पाए।
1: टेनिस की दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट में शामिल यूएस ओपन 2026 अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। 23 अगस्त से शुरू हुआ यूएस ओपन 13 सितंबर तक चलेगा और अब सिंगल्स ड्रॉ में खिलाड़ियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। राउंड ऑफ 16 के मुकाबलों के बाद अब क्वार्टर फाइनल की तस्वीर भी साफ होने लगी है। सबसे पहले बात करते हैं पुरुष एकल की। डिफेंडिंग चैंपियंस और दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टॉमी पॉल को सीधे सेट्स में हरा कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। अल्कराज ने ये मुकाबला 6-4, 6-3, 6-4 से अपने नाम किया। मैच करीब 2 घंटे और 21 मिनट चला। इस जीत के साथ अल्कराज ने ग्रैंड स्लैम में लगातार 18वीं जीत दर्ज की है, जिसमें 11 जीत यूएस ओपन में है। लेकिन अल्कराज के सामने अब बड़ी चुनौती होगी। अमेरिका के बेन शेल्टन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रीस के स्टीफेनोस सिट्सिपास को सीधे सेट्स में हरा दिया। शेल्टन ने मुकाबला 6-2, 6-3, 6-4 से जीत लिया है। इस जीत के साथ शेल्टन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और उनका सामना अब कार्लोस अल्कराज से होगा। यानी यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में अब एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन अल्कराज होंगे और दूसरी तरफ घरेलू दर्शकों के सामने खेल रहे बेन शेल्टन। ये मुकाबला निश्चित तौर पर टूर्नामेंट के सबसे चर्चित मुकाबलों में से एक होगा। अमेरिका के फ्रेंसी टेफो ने 7वीं वरीयता प्राप्त 2021 यूएस ओपन चैंपियन डेनियल मेदवेद को सीधे सेट्स में हरा दिया। इस जीत की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मेदवेद के खिलाफ पिछली 7 भिड़ंत में टीएफओ सिर्फ एक बार जीते थे, लेकिन इस बार अमेरिकी खिलाड़ी ने घरेलू दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन किया और मेदवेद को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। अब बात करते हैं महिला सिंगल्स की। दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी और 2 बार की डिफेंडिंग चैंपियन एरियाना सेबेलेंका ने भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। सेबेलेंका ने अमेरिका की टेलर टाउनसेंट को 6-4, 6-3 से हरा कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। टाउनसेंट ने उन्हें कड़ी चुनौती दी, लेकिन सेबेलेंका महत्वपूर्ण मौकों पर अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब रही। इस जीत के साथ सेबेलेंका ने यूएस ओपन में लगातार 17वीं जीत दर्ज की और लगातार 6ठी बार इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब उनकी नजर लगातार तीसरी यूएस ओपन सिंगल्स टाइटल पर है, यानी सेबेलेंका के पास इतिहास रचने का शानदार मौका है। वहीं अमेरिका की जेसिका पेगुला ने भी राउंड ऑफ 16 में शानदार जीत दर्ज की। तीसरी वरीयता प्राप्त पेगुला ने 16वीं वरीयता प्राप्त अनुभवी खिलाड़ी सोरेना क्रिस्टी को 6-3, 6-4 से हराया। इस जीत के साथ पेगुला क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं और अब उनकी नजर दुनिया की नंबर एक रैंकिंग की दौड़ पर भी है। महिला वर्ग में अमेरिका की एमा नवारो ने भी शानदार प्रदर्शन किया। 26वीं वरीयता प्राप्त नवारो ने 21वीं वरीयता प्राप्त अना केलिनसाकिया को 6-4, 6-2 से हराया। नवारो के लिए ये जीत इसलिए खास है क्योंकि ये 2024 यूएस ओपन में सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी थी। अब एक बार फिर वो अपने सर्वश्रेष्ठ ग्रैंड स्लैम प्रदर्शन की ओर बढ़ रही हैं। यूएस ओपन के इस दौर में एक और दिलचस्प कहानी जेंग क्विनवेन की रही। तीसरे दौर में उन्होंने मेडिसन के खिलाफ जबरदस्त वापसी की थी। जेंग ने मुकाबले में 5-0 से पिछड़ने के बाद मैच पॉइंट भी बजाया और आखिरकार जीत दर्ज की। वो राउंड ऑफ 16 तक पहुंचने वाली सबसे कम रैंक वाली महिला खिलाड़ी बनी। उनकी रैंकिंग 121 थी, यानी यूएस ओपन 2026 का राउंड ऑफ 16 सिर्फ बड़े नामों के आगे बढ़ने की कहानी नहीं रहा, बल्कि युवा खिलाड़ियों, घरेलू सितारों और बड़े उलटफेरों ने भी टूर्नामेंट को बेहद रोमांचक बना दिया है।

0: जैसे जैसे टूर्नामेंट क्वार्टर फाइनल और फिर सेमीफाइनल की ओर बढ़ रहा है, सभी की नजरें अल्कराज, शेल्टन, टियोफो और सेबेलेंका जैसे सितारों पर है।
1: और अब खिताबी जीत पर नज़र डालते हैं। चाइना मास्टर्स में तीन फाइनल, दो दिल तोड़ने वाली हार और लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बेसब्री से इंतज़ार था। रविवार को खेले गए रोमांचक फाइनल में सात्विक और चिराग ने शानदार वापसी करते हुए चीन की घरेलू जोड़ी हे जी तिंग और रेन जियांग यू को तीन गेम तक चले मुकाबले में 11-21, 21-13, 11-21, 17 से हराया है। 1 घंटा 10 मिनट चले इस मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने शुरुआत में ज़रूर संघर्ष किया, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा सात्विक और चिराग ने अपनी रणनीति बदली और मैच का रुख पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया। पहले गेम की शुरुआत भारतीय जोड़ी के लिए बेहद ख़राब रही। सात्विक और चिराग देखते ही देखते 0-5 से पिछड़ गए। चीनी खिलाड़ियों ने तेज़ रैलियों और लगातार हमलों से भारतीयों को दबाव में रखा। कोर्ट के बीच से किए जा रहे उनके हमलों का सात्विक चिराग के पास कोई तत्काल जवाब नहीं था। नतीजा रहा पहला गेम चीन के खिलाड़ियों ने 21-11 से जीत लिया, लेकिन इसके बाद भारतीय जोड़ी ने जिस अंदाज में वापसी की वही इस फाइनल को सबसे बड़ी कहानी बन गई और दूसरे गेम में चिराग ने नेट पर खेल की रफ्तार बदलने की जिम्मेदारी संभाली और उन्होंने शटल को जल्दी रोकना शुरू किया और चीनी जोड़ी को अपनी पसंद की रफ्तार से खेलने का मौका नहीं दिया। इस बदलाव से सात्विक और चिराग ने अपने विरोधियों को पूरे कोर्ट में दौड़ाया और उन्होंने डिफेंस भी बेहतर हुआ और स्मैश के साथ साथ शॉट्स में वेरिएशन दिखाई दिए। भारतीय जोड़ी ने दूसरा गेम 21-13 से जीतकर मुकाबले को निर्णायक तीसरे गेम में पहुंचा दिया। तीसरे गेम में दोनों जोड़ियों के बीच ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिली। एक समय हे और रैन 11-10 से आगे थे और भारतीय खिलाड़ियों से कुछ गलतियाँ भी हुई, लेकिन सात्विक और चिराग ने आक्रामक खेल जारी रखा और कोर्ट के पिछले हिस्से से सात्विक ने चीनी खिलाड़ियों के बैकहैंड को लगातार निशाना बनाया और इससे उनके रिटर्न कमज़ोर हुए और भारतीय जोड़ी को अटैक के मौके मिलते रहे। फिर आया मैच का सबसे बड़ा मोड़। तीसरे गेम में ज़्यादातर समय पीछे रहने के बाद सात्विक चिराग ने 18-17 की बढ़त हासिल कर ली। जवाब अब चीनी जोड़ी पर था और अब घरेलू दर्शकों के सामने खेल रहे हे और रेन से गलतियां होने लगी। निर्णायक क्षण में सात्विक ने शानदार फ्लिक सर्व करके चीनी खिलाड़ियों को चौंका दिया, उनका सल्तनत बिगड़ा और भारतीय जोड़ी ने इसका पूरा फायदा उठाया। इसके साथ ही सात्विक और चिराग को मैच पॉइंट मिला और उन्होंने उसे भुनाते हुए 21-17 से तीसरा गेम अपने नाम कर लिया और खिताबी जीत हासिल की। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं सात्विक चिराग इस जीत के बाद।
2: Yeah, playing here is always good. We have played always coming back from injury. I think in 2024 after Olympics we played here, we played semis. Then last year we weren't in a good shape. We played finals. I think this also like after coming back from injury, I think this has been a tournament where gave us a lot of confidence. I think this week has been same story from the except the first round. I think second game all the games we have played three games. I think today we kind of hurled the nerve. We didn't do mistakes in the last, easy mistakes, so that was a positive from the today's match and we are just sticking to the game plan. We made a game plan before coming, we wanted to do that. If we work, then it's good. If not, we'll go back and work again.

Panga Production, Natacha Baramoto. Roger Niwa.

0: परिवार और देश मजबूत होगा। योजना से जुड़े भविष्य के लिए पेंशन योजना अपनाएं। छोटी शुरुआत भविष्य में बड़ी सुरक्षा देती है। अंत में यही कहना चाहूंगी, सशक्त महिला सुरक्षित परिवार और समृद्ध राष्ट्र की पहचान है। इसी संदेश के साथ नमस्कार।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे ये बातचीत, विषय था जन धन खाते, बीमा और पेंशन योजनाओं का उपयोग। और इस विषय पर असिस्टेंट जनरल मैनेजर आरबीआई पूर्व ममता गांधी जानकारी दे रही थी।
2: भाई वीरेंद्र भाई, देखिए अभी बात पैसे की हो रही थी, तो मैं तो कहूँगा कि अब हमारे बहनों भाइयों का मनोरंजन कराना है और वो रागनी जो भी हो ना, वो भी पैसे की होनी चाहिए।
1: अच्छा, नेकी और पूछ पूछ।
2: नहीं, नेकी और पूछ पूछ।
1: जी ठीक कहा आपने, तो चलिए बात करते हैं पैसे की। और गायक हैं जयवीर भाटी।

0: वीरेंद्र भाई, अभी देखिए जयवीर भाटी कह रहे थे कि चक्कर खा के गिरा धरण पे, मरता मरता रह गया रे।
1: जी शाहिद भाई, बिल्कुल ना मरण दें किसी ने, क्योंकि हमारे पास एक खास योजना है, प्रधानमंत्री जन औषधि
0: ये
1: योजना।
0: तो बड़े काम की योजना है भाई। इसमें
1: जी
0: जो है ना,
1: हाँ
0: वाकई आपने जो बात बताई ना कि मरने नहीं देंगे, ये दरअसल जो ये स्कीम है, सरकार की मंशा ही यही है कि किसी की जान दवाई के बिना ना जाए। भाई
1: बिल्कुल
0: मरना तो सभी को है
1: जी
0: ना, एक ना एक दिन जाना है, लेकिन कोई बीमार कोई परेशान सिर्फ इसलिए ना रह जाए कि
1: कि
0: उसको
1: उसे
0: दवाई नहीं
1: नहीं
0: मिली।
1: मिल रही। तो जन औषधि योजना के तहत क्या क्या मिलता है बताने वाले हैं आपको शाहिद भाई। जो इसकी खास बात है ना, वो ये है कि जगह जगह पे जन औषधि केंद्र खोले जाते हैं, जिसमें तकरीबन 50% से लेके 90% तक सस्ती दवाएं मिलती हैं और गुणवत्ता उनकी उतनी होती है।
0: ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर कोई दवाई 100 रुपए की मिल रही है तो 50 रुपए से लेके 10 रुपए तक उसकी कीमत हो सकती है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें 2000 से लेके 300 तक जो दवाइयां हैं, मतलब उनकी जो नंबर ऑफ मेडिसन्स हैं, दवाइयों की संख्या
0: इतनी
1: है।
0: आर्टिकल, इतनी
1: जी
0: इतनी तरह की दवाइयां आपको मिल
1: जी
0: रही हैं।
1: जी और ये जितने भी जन औषधि केंद्र हैं उन पे गुणवत्ता की भी पूरी मतलब खैर खबर ली जाती है, ऐसी नहीं मिल जाती वो
0: भाई
1: दवाइयां।
0: ये तो सरकार ने चला रखी है, सरकार का सिस्टम। और बड़ी चीज़ ये है कि देश भर में ना लगभग लगभग हम समझते हैं कि 20,000 इसके जो है कि सेंटर खोले गए हैं।
1: जी और जो साथी वेबसाइट के थ्रू इसको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भाई इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे जन औषधि केंद्र हैं, तो इसके लिए

0: आपको लॉग इन करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना पोर्टल।
1: एक चीज और भी है वीरेंद्र भाई,
0: जी
1: अगर किसी को ये शक है कि सस्ती मिल रही है तो ये दवाई ऐसी काम नहीं करेगी, पूरी नहीं है, तो बिल्कुल ये दिमाग से बात निकाल दें, क्योंकि पूरी तरीके से जांची परखी दवाई है। और जो कई तरह के टैक्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का मुनाफा होता है ना, उसको कम करके सरकार ने यहाँ पे लाया है, ताकि आपको 50 से 90% कम दाम में ये मिले।
0: जी, महत्वपूर्ण योजना है और जो कोशिश करनी चाहिए, सरकार कोशिश कर रही है, हम कोशिश कर रहे हैं, बीमार हो जाए उसे भी कोशिश करनी है कि भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लेकिन बाकी तो जो कुछ लिखा है वो
1: ऊपर वाले के ही हाथ में है भाई,
0: जी
1: तकदीर जिसको कहते हैं।

0: वाकई तकदीर का कोई बेरा नहीं होता है। अभी आप सुन रहे थे जयवीर की आवाज़ में ये प्रस्तुति, और इसी के साथ आज का ये ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी सुनने वालों को राम राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पराशर और संयोजक शिव नंदन लाल।

0: पर अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। निर्वाचन आयोग ने असम की

0: आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुद्दुचेरी की थट्टनचावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यवसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: समारोह गोवा के तलेगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंधन निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लक्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया है कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहले शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत कर रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैकटेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्य योजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण यह दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने सेमीफाइनल में आज सरिता को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम, राम राम। और शाहिद भाई, जो कृषि का व्यवसाय है ना, वो इंसानों का सबसे पुराना व्यवसाय है। सबसे पहले उन्होंने कृषि ही करनी शुरू की, उसके बाद कृषि से ही अन्य व्यवसाय आरंभ हुए हैं।
1: वीरेंद्र भाई, बड़े पते की बात बताई आपने, 100% 100% एकदम सही बात बता रहे हैं। और वाकई कृषि से पुराना कोई इतिहास है ही नहीं। मानव सभ्यता जब शुरू हुई, बल्कि इंसान धरती पे किसी भी रूप में आया, पैदा हुआ, उसके बाद पहला इतिहास कृषि का है। और अगर पहली तलाश करें तो आवश्यकताएं, चूंकि आविष्कार की जननी है, तो वो भोजन और पानी की तलाश है
0: जी।
1: ये दो चीजें बड़ी अहम है
0: जी। शाहिद भाई, जितनी भी अगर हम पुरानी सभ्यताओं को देखें तो वो नदियों के किनारे ही पनपी, जहाँ मीठे पानी की नदियां थी उनके पास ही सभ्यताएं बनी। और वहां सबसे पहले क्या हुआ कि खेती करनी शुरू की
1: फिर उसके बाद धीरे धीरे कुनबे जुटे, धीरे धीरे धीरे धीरे कॉलोनाइजेशन, और एक तरीके से कह लीजिए ना कि वो पूरा समुदाय बना। और इसी तरीके से पूरी दुनिया जो है कि परिष्कृत होती गई, विकसित होती गई, और आज यहाँ तक हम पहुँचे
0: जी। शाहिद भाई, जो खेती बाड़ी है वो दुनिया का आधार है, इसी से पूरी दुनिया का जो चक्र है वो चलता रहता है। और अब खेती भी इतनी बदल गई है कि इसमें किसान जो है नए नए तरीके अपनाते हैं,
1: आवश्यकताओं के अनुरूप जो है ना कई तरह के रिसर्च होते हैं, संवर्धन होता रहता है, और ये सतत प्रयास है, सतत प्रक्रिया है। और इसी के नतीजे में आज ये देखिए कि हम गेहूं कितना ज्यादा उत्पादित कर रहे हैं। एक दौर था दादा परदादा के जमाने में, लोग बताते थे कि इतना कम आटा पैदा हो, इतना कम गेहूं पैदा होता था कि कभी कभार जो है कि वो जब मेहमान आते थे गेहूं की रोटी बनती थी, बाकी मोटा अनाज खाया जाता था, वो भी पूरा नहीं होता था
0: जी। शाहिद भाई, ऐसे ही जो हमारी खेती बाड़ी की फसलें हैं उनमें कई बार मूल्य कम होने की वजह से किसान है ना उसको करना नहीं चाहते। हाँ। लेकिन अगर उन्हें सही समय पे और उनकी फसल का सही मूल्य मिल जाए तो पौबारा हो जाती है।
1: अरे बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और मेरे पास बिल्कुल इसी मुद्दे पे एक जानकारी है ना, वो जानकारी जो है कि डॉक्टर श्रुति सेठी दे रही हैं, जिनसे बात कर रहे हैं अमित तेवतिया, और इस विषय का नाम है फसलों के मूल्य संवर्धन द्वारा अधिक आमदनी।
0: जी, तो सुनवाते हैं आपको ये बातचीत।
2: नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में कोई ना कोई वैज्ञानिक सोच, अनुसंधान और ऐसी जानकारी साझा करते हैं जिसमें हमारे किसान भाई बहन हों, हमारे युवा साथी हों, जो आज कहीं भी रोजगार की दृष्टि से अपने को कुछ नया सोचने की श्रेणी में रखते हैं, तो हमारा कार्यक्रम उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। आज हमने अपने कार्यक्रम में डॉक्टर श्रुति सेट्ठी को आमंत्रित किया है। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन।
3: धन्यवाद।
2: और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार जो पारंपरिक कृषि कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में यदि हम मूल्य संवर्धन करें फसलों में, तो निश्चित रूप से हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक नया व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं, स्वयं के लिए रोजगार के संसाधन उपलब्ध कर सकते हैं अपने पास ही। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर श्रुति सेट्ठी से फसलों के मूल्य संवर्धन से अधिक आमदनी कैसे करें। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि यह जो है मूल्य संवर्धन, कहीं ना कहीं हमारे साथी सोच रहे होंगे कि क्या है और किस प्रकार इसको समझा जाए, तो यहीं से शुरू करते हैं कि मूल्य संवर्धन है क्या।
3: जी, आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि क्या चीज होती है मूल्य संवर्धन। जब हम मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, तो उसका ये मतलब है कि हम किसी भी खाद्य उत्पाद को जो हम कटाई के बाद लेते हैं, या जैसे हम दूध लेते हैं गायों से, उनको कैसे हम उपभोक्ता तक नए नए तरीके से पेश करें, कैसे उसको ऐसे एडिबल फॉर्म में दें। जैसे आपने धान की खेती करी तो धान आया आपके पास, वो खाने योग्य तो नहीं होता है, लेकिन जब तक हम उसकी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो उसको हम खाने योग्य नहीं बना सकते। तो ये एक प्रकार का मूल्य संवर्धन है, कैसे किसी जो खाद्य उत्पाद है उसको हम कैसे खाने योग्य बनाएं। दूसरी चीज ये है कि हम

0: उसकी कैसे भंडारण अवधि को बढ़ाएं। जैसे जब हम दूध धोते हैं तो वो ज्यादा देर नहीं टिक पाता है,
1: जी
0: लेकिन जब हम उसकी पैस्टराइजेशन कर देते हैं या कम ताप पे रखते हैं तो वो हम ज्यादा देर तक उसका रख रखाव कर सकते हैं। ऐसे ही फल सब्जी, उनको ज्यादा दिन रखना है तो हमें कुछ प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण करना है ताकि हम ज्यादा दिन तक रख पाए। इससे क्या होगा, जो भी प्रोसेसिंग करते हैं, मूल्य संवर्धन मतलब हम उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं। जो भी आपकी उपज आई उसमें जितने की हो गया उससे आपको कभी कभी 5 गुना या 10 गुना आमदनी होती है, तो वो मूल्य संवर्धन।
1: यानी कि बिल्कुल हम कह सकते हैं कि फसल को किसी अन्य उत्पाद के रूप में उपभोक्ता तक पहुंचाना मूल्य
0: बिल्कुल
1: संवर्धन है। तो अब हम जब इतना समझ रहे हैं तो अब हमें सीखना है या हम कोशिश करेंगे कि जो मूल्य संवर्धन है वो किन-किन फसलों में किया जा सकता है।
0: जी, देखिए सारी फसलों में हम मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। आजकल आप देखिए बाजरे का बहुत प्रचलन है, तो बाजरा आप ऐसे नहीं खा सकते,
1: जी
0: उसका आपको बाहर का छिलका उतारना है या उसके कोई प्रसंस्कृत उत्पाद बनाने हैं, वो भी एक मूल्य संवर्धन है। कोई फल सब्जी जैसे टमाटर, आंवला, या अगर हम गोभी की बात करें, इन सब का अचार चटनी बनता है। फल लेंगे अगर तो जैसे सेब है, सेब का जैम बहुत प्रचलित है, या हम आम ले, आम का अमचूर सबसे ज्यादा प्रचलित है, हर घर में अमचूर इस्तेमाल होता है, हर घर में अचार आम का इस्तेमाल होता है। तो आप कोई भी फसल लें उनका आप मूल्य संवर्धन जरूर कर सकते हैं।
1: यानी कि हम तो कह सकते हैं कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, चाहे वो अपने खेतों में कोई भी फसल लगाए हुए हैं, बागवानी कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें आप मूल्य संवर्धन कर
0: बिल्कुल,
1: सकते हैं।
0: जैसे अभी देखिए गेहूं की बात करें, अगर हम गेहूं से हम आटा बनाएंगे
1: जी
0: तो वो एक मूल्य संवर्धन है। आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं और उससे जो आटा बनेगा उससे मैदा बनेगा, और मैदा से आगे जाके देखिए कई सारे बेकरी के उत्पाद बनते हैं, या आप भटूरा देखेंगे
1: जी
0: मार्केट में
1: बिल्कुल
0: मिलता
1: बिल्कुल
0: है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, आपको अलग अलग विविध प्रकार के प्रोडक्ट्स देती है, ये एक मूल्य संवर्धन।
1: तो डॉक्टर साहब, जब हम मूल्य संवर्धन करने का विचार करें तो सबसे पहले आता है करें कैसे।
0: जी
1: तो जो हमारी वैज्ञानिक सोच है, जो आप अनुसंधान कर रहे हैं, लगातार देश के बेटे बेटियां लगे हैं अनुसंधान के क्षेत्र में, और आज हम देख रहे हैं कि विज्ञान महत्वपूर्ण स्थान रखता है,
0: बिल्कुल,
1: तो हम अपने किसान भाई बहनों तक कैसे पहुंचाएं कि हम किस प्रकार से मूल्य संवर्धन शुरू करें।
0: देखिए सबसे पहली बात है, किसान भाई बहन अगर शुरू करना चाहते हैं तो वो एक छोटी इकाई लगाएं
1: जी
0: और ये देख लें कि उनको कौन सा रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा उपलब्ध है। क्योंकि क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी दिक्कत आती है, कहीं से दूर दूर जगह से अगर आपको रॉ मटेरियल लेना है तो दिक्कत आएगी। आपके आसपास के खेत में क्या चीज अवेलेबल है, कौन सी क्रॉप अवेलेबल है, तो वो उसको लेके फिर मार्केट डिमांड देखें कि मार्केट में कौन सी चीज ज्यादा प्रचलित है, उपभोक्ता को कौन सी चीज ज्यादा पसंद है, उस चीज का व्यवसाय शुरू करना फायदेमंद होता है। क्योंकि क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, आप हमारे किसान भाई बहन अगर पैसा खर्चेंगे तो उतना मुनाफा नहीं हो पाएगा उनको।
1: जी
0: इसलिए जो आसपास फसलें उग रही हैं उन्हीं का चयन करें और उनको हम ये बोलते हैं कि प्रोसेसेबल वेराइटी लें, ताकि जैसे आम के केस में हमें ये चाहिए अगर अचार डालना है तो उसका जो गिटक है वो पतली होनी चाहिए, गूदा
1: बिल्कुल
0: ज्यादा
1: बिल्कुल
0: होना चाहिए, तो ऐसे वो वैरायटी का चयन करें जो प्रोसेसेबल हो, जिससे आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उससे आपको मुनाफा हो पाए, तो
1: यानी
0: आसपास
1: कि
0: देखना
1: जी जी
0: पड़ेगा।
1: सीधा कहें कि लागत कम आए और उत्पादन
0: बिल्कुल,
1: अच्छा मिले, तो
0: यस
1: यही
0: यस,
1: अधिकतम लाभ का उद्देश्य होता है कि किसान भाई घर बैठे अधिकतम लाभ कैसे कमाएं,
0: बिल्कुल
1: यही सोच है। और इसी को लेकर के मूल्य संवर्धन पे बात चल रही है डॉक्टर श्रुति सेट्टी से। तो डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं प्रशिक्षण की जब बात आती है
0: जी
1: तो जो हमारे अनुसंधान संस्थान हैं या कृषि वैज्ञानिक केंद्र हैं, ऐसे में हमारे युवा साथी, हमारे किसान भाई बहन कहाँ संपर्क कर सकते हैं कि कैसे करें इसको, यदि वो सीखना चाहते हैं तो
0: जी
1: कहाँ इसका प्रशिक्षण मिल सकता है।
0: देखिए हमारे भारतवर्ष में इतने सारे केवी के हैं, तो जिस भी राज्य से कोई भी किसान भाई बहन हमारा शुरुआत करना चाहते हैं प्रोसेसिंग की, कोई भी व्यवसाय लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो सबसे पास वाले केवी के में संपर्क करें,
1: जी
0: या कोई भी इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो रेगुलर ट्रेनिंग कराती हैं, वहां पे शुरुआत करने से पहले आपको ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे,
1: बिल्कुल
0: छोटी छोटी बातें नहीं पता होंगी, तब तक आप क्वालिटी का ध्यान नहीं रख पाएंगे, एक अच्छा प्रसंस्कृत उत्पाद नहीं बना पाएंगे। अभी हमारे संस्थान में अगले महीने सितंबर में 8 से 13 तारीख तक हम लोग एक ADP चलाने वाले हैं, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एग्रीप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके अंतर्गत हम पूरे देश से एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं और ये 5-6 दिन की ट्रेनिंग होती है, उनमें हम अलग अलग चीजों का ज्ञान देते हैं, जैसे आपने बोला साइंटिफिक
1: जी
0: तरीके
1: बिल्कुल
0: से
1: बिल्कुल
0: ज्ञान देते हैं, ताकि जो भी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहे वो कर पाए। और इसके अलावा हमारे यहाँ स्टार्टअप्स बहुत आते हैं, हमारे यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर है हमारे पूसा संस्थान में, वहां पे आके भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं।
1: तो इसमें डॉक्टर साहब, यदि हम बात करें, बहुत सारे हमारे जब कार्यक्रम किसान भाई बहन सुनते हैं तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो किसान ही हो।

0: जी युवा साथियों के लिए भी आप
1: बिल्कुल
0: सरकार इसमें क्या कुछ योगदान दे रही है और क्या सरकार का है कि हमारे युवा साथियों इससे जुड़े और रोजगार लें, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम सरकार ने चलाए हुए हैं, हमारे यहाँ संस्थान में भी बहुत है। हमारे यहाँ ZTMU करके एक यूनिट है जो इन स्टार्टअप्स को एकत्रित करके उनको थोड़ा ये पैसा देके उनसे उनको मदद करते हैं ताकि वो अपना जो भी आइडिया है
0: जी।
1: क्योंकि आजकल युवा वर्ग में बहुत बढ़िया बढ़िया आइडिया है कि कैसे हम लोग प्रसंस्करण में जाएं या कोई बहुत ही अच्छा इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाएं, तो उसके लिए हम उनको सपोर्ट करते हैं, हमारा संस्थान सपोर्ट करता है और उनके आइडिया को हम आगे ले जाते हैं। फिर कभी कभी हम मार्केट से भी उनको संपर्क कराते हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से आगे चल सके।
0: तो डॉक्टर साहब जब मूल्य संवर्धन की बात आएगी तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं कृषि यंत्रों की आवश्यकता, तो उसमें भी सरकार योगदान करती है, आप उसमें क्या सलाह हमारे साथियों को देना चाहेंगे?
1: देखिए जब भी कोई आपको प्रोसेसिंग का कोई प्लांट लगाना है तो कैपिटल कॉस्ट में आपको अलग अलग जगह से 35% तक सहायता मिल सकती है। किसान भाई बहन जैसे MSME है, ऐसे कई सारे संस्थान सरकार के जो आपको मॉनिटरी हेल्प करती है ताकि आप अपना एक इकाई लगा पाएं, तो उसके लिए आपके पास एक पूरा प्रोजेक्ट प्लान तैयार होना चाहिए जो आप वहां पेश करेंगे ताकि उनको लगे कि हाँ इसमें दम है, तभी तो सरकार हेल्प करेगी ना आपको। और इसके लिए आपको बैकग्राउंड होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपको नॉलेज नहीं है, आपका प्रशिक्षण नहीं है, तब तक आपको आगे बढ़ने में भी मुश्किल आएगी। तो सबसे पहले प्रशिक्षण लें और आप प्रोजेक्ट बना के आप प्रपोज करें तो उससे आपको सहायता मिलेगी।
0: डॉक्टर साहब कई बार जब बैंक में जाते हैं हमें लोन चाहिए तो कई बार देखा गया है कि जो प्रशिक्षण की आप बात कर रहे हैं, यदि प्रशिक्षण का कोई प्रमाण पत्र हमारे पास है, कोई सर्टिफिकेट है, तो उस पर बैंक आसानी से लोन दे देते हैं और युवा साथी काम में लग जाते हैं। तो क्या आपके माध्यम से भी या हम कहें सरकार के माध्यम से भी जो आपके प्रशिक्षण संस्थान है उसमें हमारे युवा साथियों को इसमें लाभ मिलेगा?
1: देखिए हम तो प्रशिक्षण दे सकते हैं और जो आपको अच्छे से प्रशिक्षण देने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है उससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हम ये कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा, आपको लोन लेने में भी सहायता मिलेगी, तो वो आप कर सकते हैं।
0: तो हम तो यही कहेंगे कि चलते चलते आप एक बार और हमारे सभी युवा साथियों को कहें कि भाई जो मूल्य संवर्धन है इससे आप जो रोजगार के संसाधन जुटा सकते हैं, इसमें क्या टिप्पणी आपकी रहेगी?
1: देखिए मैं तो सबसे पहले जो भी ये अपना इकाई लगाना चाहें या अपना प्रसंस्करण का यूनिट लगाना चाहें तो यही सलाह दूंगी कि आप सबसे पहले ट्रेनिंग लें, एक नॉलेज गेन करें, पहले मार्केट देखें कि आपको किस चीज़ पे व्यवसाय शुरू करना है, ताकि आगे जाके जब भी आप एक व्यवसाय शुरू करें, हम चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो,
0: बिल्कुल,
1: तो ये ना हो कि आपको बीच में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएं, इसलिए पहले ही आप नॉलेज गेन करें और उस चीज़ में जाएं जिसमें आपको अच्छा लगता है, जिस जो प्रोडक्ट आपको लगता है मार्केट में बहुत अच्छी तरह चलेगा। तो और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना है क्योंकि FSSAI का रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है, वो लें और फिर ही कोई बिजनेस शुरू करें।
0: यानी कि सीधी बात है, पहले सीखना और सीखने के बाद उसको कैसे हमें अप्लाई करना है तब कमाना शुरू होगा। डॉक्टर श्रुति सेट्ठी आप कार्यक्रम में उपस्थित हुई और इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंची, आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
2: साथियों अभी आप सुन रहे थे बातचीत, विशेषज्ञ थी डॉक्टर श्रुति सेट्ठी और आपसे बात कर रहे थे अमित तेवतिया। विषय था फसलों के मूल्य संवर्धन द्वारा अधिक आमदनी। और साथियों कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इंसान करना चाहे और नहीं कर पाएगा, धरातल की जानकारी आपको होनी चाहिए।
3: बिल्कुल वीरेंद्र भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो धरती है ना, ये हकीकत में ये धरती सोना देती है, धन धान्य देती है, सब कुछ उगाती है, सब कुछ पैदा करती है, बस हमें चाह होनी चाहिए
2: जी।
3: और देखिए ये जो उत्पादकता की बात जो कह रही थी, जो संवर्धन की बात कर रही थी श्रुति सेठी, वाकई उनकी बात 100% मैं तो सही मानता हूँ कि आदमी अगर लग जाए, हमारे बहुत सारे युवा साथी लगे हुए हैं, बहुत सारे पारंपरिक खेती करने वाले किसान भाई भी लगे हुए हैं और वो अच्छा कर रहे हैं, ऐसा हम कर सकते हैं
2: जी। और बात चली है धरती की और धरती पे इतने सारे काम हैं और उन कामों की भी बात चली और उनके प्रारूप के बदलने की भी बात हमने
3: सुनी। भाई इसी को तो कहते हैं धरती की माया और धरती की छाया, सब कुछ है
2: जी। तो धरती की माया है, धरती की छाया है, तो अब वो भी सुनवा देते हैं जो धरती के बारे में अतुल कुमार ने गाया है।
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।

0: साथियों, धरती की विधा निराली है, कहीं पे धरती भूरी है, कहीं पे काली है, कहीं पे रेगिस्तान है और कहीं पे हरियाली है।
1: बिल्कुल वीरेंद्र भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। धरती की माया जो है ना, वो अपरंपार है। और धरती देखिए, जो जैसा चाहता है उसको वैसा देती है। जितनी मेहनत करता है, जितना डालता है, उतना उगाता है।
0: जी बिल्कुल, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा।
1: हाँ
0: जी,
1: और देखिए, उसी को लेके जो है ना, जब आप खेती करते हैं, आप कई तरह की जो है कि उसमें दुश्वारियां झेलते हैं, और फिर भी कोई कोर कसर बाकी रह जाए, कोई जानकारी ना मिले, कोई जो है कि व्यवस्था आप ना कर पाएं, तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है।
0: जी शाहिद भाई, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि जो सही तरीके से जानते नहीं हैं कि खेतीबाड़ी तो रिस्क का सौदा है। तो भैया ऐसी बात नहीं है, जो सरकार है वो बहुत जागृत है और किसानों का बहुत ध्यान रखती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम ना सुनाया अभी उन्होंने, है ना?
1: ये आपने बड़ी प्रति की बात कही। देखिए, फसल बीमा योजना जो है ना, सही तरीके से खेती को और अपने किसान भाइयों को ना, ये सपोर्ट करने की, मदद करने की योजना है।
0: जी
1: मतलब आप किसी भी तरह से, वो चाहे छोटे से जीव कीट पतंगों का जो है कि हमला हो जाए, चाहे जो है कि मौसमी बीमारियां हो जाए, चाहे जो है कि आपदा आ जाए,
0: जी बिल्कुल,
1: ठीक है,
0: शायद भाई
1: सूखा पड़ जाए, बाढ़ में डूब जाए, तो जितना
0: जो भी कुछ है,
1: ओला
0: बहुत
1: पड़ जाए,
0: सारे।
1: वृष्टि हो जाए, तो अगर फसल का नुकसान होता है, तो क्या है कि बीमा योजना जो है, उसका आपने अगर बीमा करा रखा है फसल का, तो उसका लाभ आपको मिलना है। यानी आप

0: आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाने वाली।
1: जी शाहिद भाई, और जो भी साथी इस बीमे को करवाना चाहते हैं वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पोर्टल है उस पर जा सकते हैं, और इसमें शाहिद भाई बहुत सारी जो मतलब क्लॉज रखे गए हैं, जो चरण रखे गए हैं, ऐसा हो वैसा हो तो सब चीज़ों के लिए सोचा है सरकार ने, सूखा हो, बाढ़ हो, ओलावृष्टि हो, और भी जो भी कुछ है, बुआई से लेके और कटाई तक इसका जो है बीमा किया जाता है।
0: बड़ी चीज़ यह है वीरेंद्र भाई कि इसमें हर फसल का चक्रवार जो है ना बीमा करने की व्यवस्था दी गई है, उसका टाइमिंग दिया गया है कि कब से कब आप बीमा कराएंगे और कितना इसमें आपको जो है कि कवरेज मिलेगा, कितना प्रीमियम तो बहुत नाम का होता है।
1: जी बिल्कुल, इसका जो प्रीमियम है वो खरीफ और रबी दोनों के लिए ही होता है। और एक खास जानकारी बता दूं शाहिद भाई अपने सुनने वालों के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए, कि 10 सितंबर 2026 जो है वो अंतिम तिथि कर दी गई है बढ़ाकर।
0: जी हाँ, मतलब इस सीज़न की जो बीमा पॉलिसी लेना चाहते हैं बीमा योजना में रजिस्टर करा सकते हैं 10 सितंबर तक।
1: जी, और शाहिद भाई जो हमारे फसल पे है ना, हम ही निर्भर नहीं करते हैं, हमारे जो इतने सारे अन्य जीव जंतु हैं वो भी, चिड़ैया चिड़िया ये भी निर्भर करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, चिड़े भी निर्भर करते हैं, चिड़िया भी करती हैं।
1: जी,

0: तो अभी आप सुन रहे थे ये रागनी मनोज कारणा की आवाज़ में।
1: और साथ ही इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। सभी सुनने वाले साथियों को राम
0: राम राम।
1: राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक
0: शिव नंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरबीआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
7: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
8: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्य निकेतन में हुई दुखद घटना की उच्चतम कार्यकारी स्तर पर जांच के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार ने सत्य निकेतन इमारत गिरने की घटना के बाद दिल्ली नगर निगम के 5 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया। सरकार ने उन इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश दिया है जिनमें बिना मंजूरी के 5वीं मंजिल बनी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक की और दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के सहयोग से स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना की उच्चतम कार्यकारी स्तर पर जांच के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने नगर निगम से यह भी पता लगाने को कहा है कि इमारत का निर्माण और संचालन वैध अनुमति के साथ किया गया था या नहीं। न्यायालय ने नगर निगम को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी पेइंग गेस्ट, पीजी आवास और छात्रावासों का 1 सप्ताह के अंदर व्यापक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
9: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थीं या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज।
8: दिल्ली सरकार ने सत्य निकेतन इमारत गिरने की घटना के बाद दक्षिण जोन के दिल्ली नगर निगम के उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षक अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायता अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा इमारत के कथित मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पूरी दिल्ली में उन इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश दिया गया है जिनमें बिना मंजूरी के 5वीं मंजिल बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आसपास के पीजी और इमारतों को भी बारीकी से जांच की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सार्वजनिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई नीति लाई जाएगी जिसके अंतर्गत पीजी, नर्सिंग होम, स्कूल और अन्य संस्थानों की इमारतों का समय समय पर संरचनात्मक ऑडिट और इमारत सुरक्षा प्रमाणन अनिवार्य किया जाएगा। चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सत्य निकेतन घटना के प्रकरण में दिल्ली नगर निगम के 5 वरिष्ठ अधिकारियों का निलंबन दिल्ली सरकार की जवाबदेही और निर्णायक कार्यशैली का प्रमाण है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि घटना के लिए केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को नहीं बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित दिल्ली के सांसदों और विधायकों की बैठक में कल की घटना पर 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की गई। उपराज्यपाल सचिवालय में आज सत्य निकेतन क्षेत्र की दुर्घटना को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक पीयूष आनंद शामिल रहे। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सूद ने बताया कि बैठक के दौरान पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तैनाती तथा आपात स्थिति में प्रतिक्रिया समय को और कम करने के उपायों पर विचार किया गया। श्री सूद ने बताया कि सभी विभागों के साथ जरूरत के अनुसार अतिरिक्त फर्श क्षेत्र अनुपात की छूट देने और मौजूदा हॉस्टलों के पुनर्विकास के लिए अधिक फर्श क्षेत्र अनुपात की मंजूरी देने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा जस्टिस गुहा समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किए जा रही रिपोर्ट के अनुसार पीजी और कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए उपायों पर भी विचार किया गया।
10: सभी विभागों की एक साझा बैठक जिसमें पुलिस, एनडीआरएफ, एनडीआरएफ की जगह जगह प्लेसमेंट, हमारा रिस्पांस टाइम और कम कैसे हो, और जो बड़ी तादाद में एक रेजिडेंशियल फैसिलिटीज का गैप है उसको पूरा करने के लिए एफएआर में जरूरत पड़ने पर एडिशनल छूट देना, एग्जिस्टिंग हॉस्टल्स को रीडेवलप करने के लिए नए एफएआर में नई बढ़ोतरी के साथ उपलब्ध कराना।
8: श्री सूद ने सत्य निकेतन की दुर्घटना के बाद पिछली सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से चली आ रही उपेक्षा और कुप्रशासन के कारण दिल्ली में बुनियादी ढांचे और व्यवस्थाओं की स्थिति खराब हुई है। श्री सूद ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आसपास छात्रों के लिए संचालित पीजी आवासों को विनियमित करने के लिए कोई प्रभावी नियम कायदे नहीं बनाए थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
11: अपडेट रहे, आगे रहें। एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
8: दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने सत्य निकेतन दुखद प्रकरण में विद्यार्थियों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस संबंध में आज कुलपति द्वारा महाविद्यालयों के प्राचार्यों की एक बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान दुर्घटना में मृत विद्यार्थियों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कुलपति ने कहा कि विद्यार्थियों की जान का नुकसान दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय हर संभव मदद के लिए उनके साथ खड़ा है। श्री सिंह ने सभी प्राचार्यों से अपने अपने महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध आवासीय सुविधाओं की समीक्षा करने का अनुरोध किया, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज युवा संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदू कॉलेज समेत दिल्ली विश्वविद्यालय के 6 महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान हिंदू कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, मिरांडा हाउस और रामजस कॉलेज के विद्यार्थियों ने दिल्ली विधानसभा का भ्रमण किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने आज सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक की। एक रिपोर्ट।
12: पूर्वी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद महादेव डोंबरे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कानून व्यवस्था, सुरक्षा, सुचारू यातायात और सीमा चौकसी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार बैठक में गाजियाबाद और नोएडा पुलिस के साथ अंतर्राज्यीय सीमा पर निगरानी बढ़ाने, अपराधियों और सुरक्षा से जुड़ी खुफिया सूचनाएं साझा करने तथा संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा जांच करने पर गहन चर्चा हुई। सम्मेलन के दौरान हवाई निगरानी और दिल्ली गाजियाबाद व नोएडा पुलिस के बीच बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन पर भी रणनीति बनाई गई। बैठक में वीवीआई वीआईपी रूट मैनेजमेंट, गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन तैयारियों पर भी समीक्षा की गई। दिल्ली पुलिस ने संबंधित सहायता पुलिस आयुक्तों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
8: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
11: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
8: दिल्ली नगर निगम MCD और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के सहयोग से आज नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस अवसर पर नई दिल्ली के सुभाष नगर स्थित MCD पश्चिमी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और पर्यावरण अनुकूल तथा टिकाऊ प्रभावों को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम का मुख्य विषय निर्माण

0: और विध्वंस स्थलों पर धूल प्रदूषण कम करने तथा बायोमास जलाने के दुष्प्रभावों के प्रति जन जागरूकता फैलाने पर केंद्रित रहा। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली सचिवालय में मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 और डेंगू को लेकर जन प्रतिनिधियों के लिए एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में पार्षद, जन प्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जन प्रतिनिधियों को H1N1 और डेंगू के लक्षणों, रोकथाम, समय रहते पहचान और उपचार के बारे में व्यावहारिक जानकारी देना था। कार्यशाला के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी पहुँचाने और रोकथाम के उपायों के लिए नागरिकों को एकजुट करने में जन प्रतिनिधियों की भूमिका पर भी विशेष बल दिया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीमारी की रोकथाम को केवल अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मियों तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसके लिए समुदाय स्तर पर भी सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। उन्होंने पार्षदों से स्वास्थ्य विभाग और फील्ड टीमों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया ताकि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी राजधानी के हर वार्ड, मोहल्ले और हर घर तक प्रभावी तरीके से पहुंच सके। उन्होंने सभी जन प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सावधानियां और संदेशों को अधिक प्रचारित करें तथा H1N1 से जुड़ी गलत धारणा को दूर करने का प्रयास करें। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: दिल्ली पुलिस ने अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से ऑपरेशन सजग के अंतर्गत 72 घंटे का गहन परिवर्तन अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाना, सेंधमारी और चोरी पर रोक लगाना, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध रूप से रह रहे प्रवासी से जुड़े अपराधों पर नियंत्रण तथा अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना था। इस दौरान पुलिस ने 39 लोगों को गिरफ्तार किया। राजधानी में आज तेज धूप के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल बादल छाए रहने के साथ साथ बहुत हल्की वर्षा की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्य निकेतन में हुई दुखद घटना की उच्चतम कार्यकारी स्तर पर जांच के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार ने सत्य निकेतन इमारत गिरने की घटना के बाद दिल्ली नगर निगम के 5 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया। सरकार ने उन इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश दिया जिनमें बिना मंजूरी के 5वीं मंजिल बनी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक की और दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के सहयोग से स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले
4: ना।
3: पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया, जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर

जब खूबसूरत गीतों का साथ होना तो संगीत की खूबसूरत सी दुनिया में ना खो जाना चाहिए और कुछ पल ना सब कामों को छोड़कर बस उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिल को जो सुकून मिलता है ना, और दिल को सुकून मिलने वाले गाने हम सुनते हैं ना तो वाकई मज़ा आता है। और अब एक और गीत जो आपको थोड़ा सा पीछे ले जाएगा, लेकिन हाँ आपको बहुत मज़ा आएगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर।

0: अब से कुछ ही देर में यानी कि ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 का समय रहेगा उर्दू में समाचारों का। आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की।

0: तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में एक सीट पर भी उपचुनाव और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची, भारत का पदक पक्का। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
1: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। CBRN टोही वाहन क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और उन्हें चिन्हित करने में सक्षम होंगे। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
0: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला, वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है, उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
4: गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज समारोह में श्री शाह ने गोवा पुलिस की सेवा और साहस की सराहना की। उन्होंने 1930 हेल्पलाइन के लिए AI आधारित वॉयस असिस्टेंट शुरू किया। श्री शाह ने 112 हेल्पलाइन पर कम हुए प्रतिक्रिया समय का उल्लेख किया और गोवा पुलिस से 2029 तक नशीले पदार्थों की समस्या खत्म करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: ये सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।
2: निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्यनिकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्यनिकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थीं या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
7: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसरो के निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया है। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
8: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और NCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है, बजट की कोई कमी नहीं है।
2: चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों के परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए DNA नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार DNA संबंधी जानकारी देना चाहते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को संबंधित चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सिदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय। आज रात 9:30 बजे इस फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: काउंसिल ने दिफाई अफवाज के लिए 1,10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा मालियत की तजवीज़ों को मंजूरी दे दी है। हमारे नामा निगार ने बताया कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में काउंसिल की मीटिंग के दौरान ये मंजूरी दी गई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इन तजवीज़ों में भारतीय फ़ौज के लिए केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल नीज न्यूक्लियाई टोह लेने वाली गाड़ियों, हाई मोबिलिटी गाड़ियों, जदीद तर्ज के हल्के हेलीकॉप्टरों, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज निज़ाम की सरकारी खरीद की तजवीज़ें शामिल हैं। भारतीय बहरिया के लिए अरुद्र रडार की सरकारी खरीद और मैरीन गैस टर्बाइन की डिज़ाइन और तैयारी नीज इसकी सरकारी खरीद के लिए तजवीज़ को भी मंजूरी दी गई है। अरुद्र रडार बहरिया के मुख्तलिफ एयर स्टेशनों पर नस्ब मौजूदा एयर रूट निगरानी रडार की जगह लेगा। इस तरह गैर मुल्की इदारों पर इन्हिसार कम हो जाएगा। उधर भारतीय फजाइया के लिए मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ाने की खातिर मुख्तलिफ तजवीज़ों को मंजूरी दी गई है। कसीर मकसदी जैमर की सरकारी खरीद और दफाई अफवाज का महफूज रसाई का कार्ड निज़ाम नस्ब करने की भी मंजूरी दी गई है। दिफा की वजारत ने कहा है कि इनमें से 98% दिफाई सामान की सरकारी खरीद भारतीय सनअतों से की जाएगी। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की दिफाई पॉलिसी रद्दअमल में कार्रवाई करने वाली से आगे बढ़कर पेशबंदी की कार्रवाई करने वाली पॉलिसी बन गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क दिफा के शोबे में खुद कफील और पुरएतमाद बनकर उभर रहा है। आज नई दिल्ली में एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि साल 2016 में मिज़ाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में भारत के शामिल होने के बाद से मुल्क ब्रह्मोस मिज़ाइल की सलाहियत बढ़ाने में कामयाब रहा और ये वज़ीर आज़म की सरगर्म सिफारतकारी और उनकी नज़रिया साज क़्यादत का नतीजा है। ऑपरेशन सिंदूर का तस्करा करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि ब्रह्मोस मिज़ाइल के मौसर होने की सलाहियत सामने आ चुकी है।
2: भारत 2016 से पहले MTCR मेंबर नहीं था, जिसके कारण हम ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज एक सीमा से आगे चाहते हुए भी हम नहीं बढ़ा पाते थे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट के सक्रिय डिप्लोमेसी और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण हमारा MTCR के हम सदस्य बने और उसके बाद ब्रह्मोस की रेंज भी बढ़ाने का काम करने में हमने कामयाबी हासिल की है। और आपको पता ही होगा कि पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की क्या भूमिका रही है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे, इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इसके अलावा वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC के 3 अहम सेक्शनों को भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जो 326 रूट किलोमीटर का अहाता करते हैं। आज अहमदाबाद हवाई अड्डे पर नामानिगारों को जानकारी देते हुए रेलवे के वर्कजी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि बारबर्दारी के लिए मखसूस मशरकी और मगरबी कॉरिडोर मुल्क के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स शोबे के लिए एक अहम वसीले के तौर पर काम करेंगे।
3: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2026 का इफ्तिताह करेंगे और इस मौके पर तकरीब से खिताब करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी और पुरवकार सालाना फिनटेक कॉन्फ्रेंसों में से एक GFF 2026 का मौजू है सलाहियत से असर पजीरी तक। इस बारे में जारी की गई सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक GFF 2026 का मकसद डिजिटल अदायगियों और मालियाती शमूलियत में भारत की क़्यादत को परवान चढ़ाना और सलाहियत से असर पजीरी तक ले जाना है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गोवा के पनजी में मगरबी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि अब मगरबी खित्ते की रियासतों के माबैन किसी तरह का कोई तनाज़ा नहीं रह गया है, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जोनल काउंसिलें तनाज़ात के तस्फीये के फोरम से आगे बढ़कर अब अवामी बहबूद की स्कीमों पर अमल दरामद की निगरानी के प्लेटफॉर्म बन गई हैं। जनाब अमित शाह ने कहा कि आज की मीटिंग में जिन मामलों पर तबादला ख्याल किया गया वो सभी निगरानी से मुतालिक थे। उन्होंने कहा कि जोनल काउंसिल में दरियाओं के मामले पर रियासतों के दरमियान कई तनाज़ात भी हल कर लिए गए हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गोवा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में एक तकरीब के दौरान गोवा पुलिस को सदर जमहूरिया का पुरवकार पुलिस परचम पेश किया। जनाब अमित शाह ने शहरियों और सयाहों को फौरी

इतना तेज नहीं, न इन कैदर तोंद, इतना तेज नहीं, जरा और तेज, कैदरी तोंद तैर। बादल छाए हैं, बादल छाए हैं, हवा अब्रस्त, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारौन मी औयात, तेज बारिश है, बारौन तोंदस्त, तेज बारिश है, बारिश बंद हो गई, बारिश बंद हो गई, बारौन मुतवक्किफ शुद, हवा अच्छी है, हवा अच्छी है, या मौसम अच्छा है, हवा खूबस्त, हवा अच्छी है, मौसम अच्छा है, हवा खूबस्त। इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष यानी रंगीन कमान, इंद्रधनुष है, रंगीन कमान अस्त। सूरज निकल आया, आफताब तुलू कर्द, सूरज निकल आया, बारिश का मौसम निकल गया, निकल गया यानी रफ्त, बारिश का मौसम निकल गया, फैसले बारौन रफ्त। पतझड़ का मौसम है, पतझड़ यानी पाईज, बैर ग्रीजोन, फैसले पाईज अस्त, पतझड़ का मौसम है। दिन छोटे हो गए, रोज हो कूतह शुद, जाड़ा है, सर्द अस्त, जाड़ा सर्द या जमिस्तान, सर्दी है, सर्द अस्त, हवा सर्द अस्त, हवा ठंडी है, बहुत खुनक अस्त। कोहरा है, कोहरा यानी मे आलूद अस्त, हवा मे आलूद अस्त या बेह अस्त। बर्फ गिरेगी, बर्फ खोहद बारीद, जल्दी ही शाम हो जाती है, जल्दी ही शाम हो जाती है, जूद आश्रमी शवद, जूद आश्रमी शवद। चांदनी रात है, शब महताब अस्त, चांदनी रात है, पूर्णिमा है, पूरा चांद है यानी माह तमाम अस्त, माह कौमिल अस्त। आज बारिश होगी, एमरूज बारान खोहद आमद, आज बारिश होगी, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है। चिनिन मी नमायद, चिनिन मी नमायद, हवा बहुत तेज है, हवा बहुत तेज है, बहुत बेस्योर तोंदस्त। धोबी नहीं आया, धोबी यानी रैखचू, रैखचू नयामदे, धोबी नहीं आया। तुम मेरी पैंट देर से लाए, पैंट शलवार, शलवार मरो धीर ओवर दी, तुम मेरी पैंट देर से लाए। तुम बहुत खराब धोते हो, बिस्योर बैद मीशुई, धोते हो मीशुई, तुम बहुत खराब धोते हो, बिस्योर बैद मीशुई, तुम अच्छा धोते हो, तुम अच्छा धोते हो, खूब मीशुई, तुम अच्छा धोते हो। स्त्री ठीक से नहीं की है, स्त्री यानी उतो, उतो खूब न खैर देई, स्त्री ठीक से नहीं की है, उतो खूब न कर दी, यह कमीज जला दी, इन पेराहन रा सूखती, यह कमीज जला दी, यह रूमाल मेरा नहीं है, रूमाल दस्तमाल रमी गुयान, इन दस्तमाल माल मैं नीस्त, यह रूमाल मेरा नहीं है। तुम ये मोजा फाड़ लाए, इन जोराब रा दरी दई, इन जोराब रा दरी दे आवर्दी, मोजा जोराब। हिसाब करो, हिसाब कौन, हम दूसरे धोबी को कपड़े देंगे, मा बिरख्त छू ये दीगारी रख्त खाहीम दौद, हम दूसरे धोबी को कपड़े देंगे। भारत एक विशाल देश है, विशाल यानी वसी पहनावर, हिंद केशवरीस्त वसी, हिंद केशवरीस्त पहनावर, भारत एक विशाल देश है, भारत हमारी मात

0: हार गपने वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे। वे राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत करना तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के महानिदेशक डॉ. साइमन हेक के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में आलू के बेहतर बीज और रोपण सामग्री उपलब्ध कराने, किसानों की समस्याओं के समाधान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा केंद्र के बीच सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा, अनुग्रह राशि और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना सहित कई मुद्दे उठाए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना फिलहाल स्थगित रहेगी।

देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल औपचारिक

आरजू फिल्म के ये गीत आपने सुना, और लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं मेरी सूरत तेरी आँखें। इस फिल्म का गीत आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम गीत सुनहरे होता है यही संपन्न। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात्रि के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेज़ी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे। वे राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत करना तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा, अनुग्रह राशि और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना सहित कई मुद्दे उठाए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना फिलहाल स्थगित रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई में इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में पारदर्शी नीतियां, सुशासन और निवेश के अनुकूल माहौल के साथ विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की मजबूत सड़क और रेल संपर्क तथा आधुनिक लॉजिस्टिक व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कृषि उद्योग, सेवा, खाद्य प्रसंस्करण और कपड़ा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए ताकि वह मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को बेहतर ढंग से दर्शा सकें। श्री बेटेल ने सुरक्षा परिषद की वीटो व्यवस्था को द्वितीय विश्व युद्ध के समय की व्यवस्था बताते हुए इसमें बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी।

है कि अगर उसके ठिकानों पर फिर हमला किया गया तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी तेल और गैस प्रतिष्ठानों समेत ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में कल सेमीफाइनल में

0: fake. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 2:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए नॉन स्टॉप फिल्म संगीता कार्यक्रम गीत बहार।

0: ईद के साथ ही आज का नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का ये कार्यक्रम होता है यहीं संपन्न। ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए अब सुनिए समाचार। रात्रि के 3 बजने वाले हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे। वे राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत करना तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृहमंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा, अनुग्रह राशि और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना सहित कई मुद्दे उठाए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार बैंक कर्मचारियों, ग्राहकों और बैंकिंग क्षेत्र के हित में संवाद और आपसी सहमति के जरिए मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल ने संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। श्री बेटेल ने सुरक्षा परिषद की वीटो व्यवस्था को द्वितीय विश्व युद्ध के समय की व्यवस्था बताते हुए इसमें बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील जैसे बड़े देशों को सुरक्षा परिषद में

0: स्थायी भूमिका मिलनी चाहिए। श्री बेचेल 7 से 9 सितंबर तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता डॉ. फारूक अब्दुल्ला और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी तथा विनोद चोपड़ा मौजूद रहे। महोत्सव में 40 से अधिक देशों की 130 से ज्यादा फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इसका आयोजन श्रीनगर, गुलमर्ग और जम्मू में एक साथ हो रहा है। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग की फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में कल सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना बुधवार को कजाकिस्तान की एजादा सेदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आर एस राघू।

0: AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गजल और गीत। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 4 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इसके अंतर्गत अभी आप सुनेंगे सुधा रघुरमन द्वारा गाया राग कंबुज।

श्रोताओं, नाद ब्रह्म कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 सितंबर 2026। सुबह के 4:53 और 45 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आइए अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से कुछ देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। 5:20 से आप देशभक्ति गीत का आनंद उठा सकते हैं।

5:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे नकुल मल्होत्रा द्वारा गाया राग ललित। सुबह 6 बजे का वक्त होगा हिंदी में समाचार का, जबकि 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। सुबह 6:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम वंदना।

0: सुबह के 5 बजने को है, ये सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही यह महत्वपूर्ण परियोजना पूरी हो जाएगी। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लेके

0: जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
1: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृहमंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल से मुलाकात के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। वहीं जेविये बेटल ने भारत के शांति प्रयासों और संघर्ष प्रभावित देशों के बीच सेतु की भूमिका की सराहना की। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। श्री बेटल 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पश्चिमी एशिया के साथ भारत के संबंधों पर संसदीय परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में उन्होंने खाड़ी और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ भारत के मजबूत संबंधों और व्यापार, निवेश तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के महानिदेशक डॉ साइमन हेक से मुलाकात की। बैठक में बेहतर आलू बीज, किसानों की समस्याओं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा केंद्र के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने भारत में उन्नत आलू किस्में लाने और अलग अलग जलवायु के अनुकूल नई किस्में विकसित करने पर बल दिया। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल आज से 11 सितंबर तक मेघालय के उमियम में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन में देश के 21 राज्यों और 51 कृषि संस्थानों से 400 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए करीब 15 किलोमीटर लंबी और 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया है। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा से गंगा एक्सप्रेसवे तक पहुंचने में करीब 30 से 45 मिनट लगेंगे। त्योहारों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रमुख खाद्य बाजारों में जांच अभियान तेज कर दिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अभियान के तहत करीब 2300 किलोग्राम लावारिस खोया, धाप और मक्खन जब्त कर नष्ट किया गया। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। एशियाई खेल 2026 जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित होंगे। हालांकि कुछ खेल प्रतियोगिताएं 10 सितंबर से ही शुरू हो जाएंगी। भारत का अभियान 17 सितंबर तक टेक बॉल से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. He will also dedicate to the nation 3 important sections of the Western Dedicated Freight Corridor, WDFC, covering 326 route kilometers developed at a cost of more than 20,700 crore rupees. The Prime Minister will also lay the foundation stone for 3 railway projects costing more than 9,700 crore rupees. In Maharashtra, the Prime Minister will inaugurate and address the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai this evening. The theme of GFF 2026, one of the world's largest and most influential annual fintech conferences, is potential to impact

आज हम के सेशन में हम देखेंगे कि थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसका काम होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना, और साथ ही साथ यह ग्रंथि हमारे हृदय, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण करती है। परंतु जब ये ग्रंथि सही रूप से काम नहीं कर पाती तो हमारे शरीर में हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और उससे उत्पन्न होने वाली कॉन्सिक्वेंसेस को हमें फेस करना पड़ता है। देखा गया है कि योग अभ्यास में उज्जयी प्राणायाम थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काफी सहायक है। तो आज हम सीखेंगे कि उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। तो इसकी अभ्यास विधि के लिए आप सबसे पहले किसी भी सुखद पूर्वक आसन में बैठ जाएं, अपने मुंह को बंद कर लें, पूरे क्षेत्र को गले के पिछले हिस्से पर संकुचित कर लें, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे एक ही लय में तब तक श्वास भरते रहें जब तक आप गले से लेकर हृदय तक उसको महसूस ना करें। श्वास लेने के क्रम में कंठ द्वार यानी थ्रोट रीजन के आंशिक रूप से बंद होने के कारण एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि हल्की और समान होनी चाहिए, साथ ही साथ इसे लगातार करते रहना चाहिए। श्वास लेते समय सीने को फुलाएं। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालें। यह इस अभ्यास का एक चक्र है। इसी प्रकार एक सेशन में आप कम से कम 4 से 5 बार उज्जयी प्राणायाम अवश्य करें, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। उज्जयी प्राणायाम आपके थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे काफी निजात पा सकते हैं। प्राणायाम के साथ साथ आप सर्वांग आसन को भी कर सकते हैं, यह भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काफी हद तक लाभकारी है। तो इस सेशन में आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए उज्जयी प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप योग अभ्यास करें तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान दें। कोई भी आप योग अभ्यास करें, उसे सहज पूर्वक करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। दोस्तों, तनाव ग्रस्त जीवन शैली से थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति अनेक चिंताओं से ग्रस्त है, जैसे परिवार की चिंताएं, पर्सनल प्रॉब्लम्स या ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स।